आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाके चुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है।
1: आ आ इधर तू आ आ
0: जा जा घर तू जा जा।

0: निकम्मा है, जाके चुप जा तू बाहर, जहाँ तेरी अम्मा है।
1: इधर तू आ आ,
0: जा जा घर तू जा जा,
1: अरे आ आ इधर तू आ आ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं वर्ड मस्ती विद आरजे वंशिका। अभी चल रही है खास वर्ड मस्ती जिसमें है एक मजेदार ट्विस्ट। तो जुड़े रहिए आरजे वंशिका के साथ और तैयार रहिए कुछ हटकर सुनने, सोचने और मस्ती करने के लिए, क्योंकि इस वर्ड मस्ती में हर शब्द के साथ छुपा है एक नया ट्विस्ट। आप भी इस वर्ड मस्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी रेडियो हॉटस्टार की चैट रूम से और बन सकती हैं इस मजेदार मस्ती का हिस्सा। तो अभी जुड़िए, अपनी बात रखिए और देखिए वर्ड मस्ती का ये ट्विस्ट आपको कहां तक ले जाता है। सुनती रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से।

नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी की आज वंशिका और आ चुकी हूं आप सभी से फिर से मुलाकात करने के लिए वर्ड मस्ती का आप सभी का प्यारा प्रोग्राम लेके।

0: और फिलहाल गाना कौन सा सुनवाया जाए पहले ये बता दीजिए।
1: मेरी पसंद का एक गाना है जो कि मैं सभी को डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: ओके
1: साया मूवी का ओ साथिया ओ बेलिया।
0: ओके तो सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार अमन के साथ जो आपको दीवाना बना दे। धन्यवाद
1: जी, बिल्कुल एंजॉय कीजिए।

0: पसंद है
1: जी, मुझे भी वैसे दिल के करीब है गाना, और जैसे इस गाने के बोल है ना, जैसे कि फूलों को तो खिलते देखा है, कांटों को खिलते देख लिया, इसके जो शब्द हैं जो दिल में उतर जाते हैं बिल्कुल।
0: जी आपने बिल्कुल ये सही कहा। अच्छा, और बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप बता दीजिए आपके तरफ कौन कौन से दोस्त जुड़े हैं। और हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी दोस्त इन दोनों आरजे के पास मैसेज कर सकते हैं, या अगर यानी किसी भी आरजे के पास मैसेज कीजिएगा तो वो दोनों के पास पहुंचेगा। आरजे वंशिका के पास अगर यानी करेंगे तो उनके पास भी जाएगा, उनका यानी के पर्सनल जाएगा। मेरे पास अगर करेंगे तो मेरे पास पर्सनल आएगा। अगर यानी किसी भी के पास करेंगे तो किसी यानी दोनों के पास जाएगा। यानी दोनों जैसे करना चाहे मैसेज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं।
1: ये आप सभी की चॉइस है, आप सभी जैसे चाहें, चाहे आप अमन जी की तरफ भेजें, चाहे आप मेरी तरफ भेजें, आप फीडबैक भेज सकते हैं। और यहाँ पे देखती हूँ तो आज चैट रूम में 110 लोग एक्टिव हैं, यानी कि बहुत सारी मस्ती चल रही है यहाँ पे।
0: बिल्कुल, अभी मस्ती चलने वाली है और यानी कि चलती रहेंगी
1: बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़े हैं एमटी फैस आलम जी, राजेश कुमार जी, अंगद मिसाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। निशांत राय बोले जी भी हैं।
0: और मेरे साथ भी यानी कि विष्णु चंद्र जी और हमारे मिसाल अंगद जी हैं, मतलब और भी दोस्त हैं जो अभी मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत से दोस्त सुन रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। तो अब सबसे पहले इन प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए कि आज का इसका रूल क्या है।
1: जी मैं बिल्कुल बता देती हूँ, जैसे कि लाइव चैट में अभी बहुत सारे लिसनर्स मुझे दिख रहे हैं, राजेश कुमार जी, अनिल कश्यप जी, एंडी फैज़ आलम जी, सभी के सभी आ चुके हैं, बट जो नहीं आए हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगी प्लीज आप सभी लाइव चैट रूम में अपने कदम रख दीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम पूरा हैंडल आउट होने वाला है लाइव चैट रूम के थ्रू ही। यानी कि आप सभी को भी गाना सुनाएंगे हम अपनी पसंद का, और उस गाने के बीच में मैं आप सभी को एक शब्द दूंगी, लाइव चैट रूम में भी शब्द आएगा, ऑनर भी बताऊंगी, और उन शब्द से आप सभी को गाना लिख के भेजना है। जो सबसे पहले गाना लिख के भेजेंगे उनका गाना प्ले किया जाएगा, और जो मेजोरिटी में गाने होंगे वो तो प्ले होने ही हैं। तो ये रहेगा कि तो आप सभी को सारा पार्टिसिपेट लाइव चैट रूम से करना है, और सेकंड राउंड जो रहेगा वो हम आपको जल्दी बता देंगे।
0: तो फिलहाल अभी क्या किया जाए, इन फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया जाए या उसके बारे में कुछ बताया जाए?
1: फर्स्ट राउंड के बारे में वैसे ये है कि आप सभी को शब्द दिए जाएंगे थीम्स के, यानी कि शब्द जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको कंगन दिया।
0: बिल्कुल, तो उनके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल,
1: जैसे मैंने कंगन शब्द दिया तो आप सभी कंगन शब्द से मुझे गाना लिख के भेजेंगे, कोई भी गाना, जैसे कि कंगन जिस शब्द मतलब गाने के बीच में कंगन आता हो, या उसके टाइटल में आता हो, या उसके बोल में आता हो, आप हमें लिख के भेजेंगे। एग्जांपल के तौर पर राजेश जी ने भेजा तो उनका गाना सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले प्ले होगा।
0: बिल्कुल,
1: ये रहेगा फर्स्ट राउंड। और सेकेंड राउंड मूवीज का, जिसमें मूवीज के नाम दिए जाएंगे।
0: ओके, तो फिलहाल
1: ऐसे आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
0: तो इसके बारे में मैं एक ऑडियो प्ले करता हूँ, ताकि फर्स्ट राउंड के लिए ऑडियो होगा। ओके
1: बिल्कुल,
0: तो ये रहा फर्स्ट राउंड का ऑडियो, आप प्लीज इसको पहले सुन लीजिए।
2: अब शुरू हो रहा है राउंड वन, वर्ड मस्ती का पहला राउंड। इस राउंड में आपको मिलेगा एक शब्द, और हर एक शब्द आपको हमारी चैट रूम में दिया जाएगा। आपको करना बस इतना है, जैसे ही चैट रूम में शब्द आए उस शब्द से जुड़ा अपना पसंदीदा बॉलीवुड गाना हमें लिखकर चैट रूम में भेजना है, और जो प्रतिभागी सबसे पहले सही गाना हमें भेजेंगे उनकी फरमाइश का गाना ही इस राउंड में प्ले किया जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ गाने की पसंद ही नहीं बल्कि आपकी स्पीड भी मायने रखेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वर्ड मस्ती का राउंड वन। ध्यान रखिएगा चैट रूम पर, क्योंकि शब्द कभी भी आ सकता है।
0: बिल्कुल, शब्द यानी कि कभी भी आ सकता है कि नहीं?
1: जी बिल्कुल, शब्द आप सभी के सामने, आंखों के सामने और आपके कानों में भी जल्दी पड़ेगा, जैसे कि हम गाना सुनेंगे ना उसके बीच में ही। और यहाँ पे मुझे एक फीडबैक दिख रहा है जो कि एम ताहिर जी लिखते हैं कि शो में एक साथ आकर आप दोनों ने दिल सभी का चुरा ही लिया है, सभी श्रोताओं का।
0: अच्छा, ऐसा भी है। फिलहाल मैं और बता दूं कि हमसे जुड़े हुए हैं हमारे अशोक कुमार जी, यानी पटना से बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अशोक कुमार जी। और अब मैं बता रहा हूं कि ये गाना मैं प्ले कर रहा हूं, और इस गाने के साथ आप सभी अब आप यानी कि वर्ड जो भी है आप देना चाहेंगे तो आप दे सकती हैं। और हाँ, इन वर्ड देने का काम करेंगी आरजे वंशिका जी। मैं तो भाई गाने एंजॉय करने का काम करने वाला हूँ आज।
1: तो फिलहाल वर्ड्स का डिपार्टमेंट मेरे तरफ।
0: जी तो फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे इस गाने को, जो मुझे बेहद पसंद आता है, यानी काजल तेरी आंखों का ये काजल। एंजॉय कीजिए इस गाने को
1: जी, एंजॉय कीजिए।

0: तो बिल्कुल कोई बुरा नहीं किया, लेकिन अब चाहे तो आरजे वंशिका जी यहाँ पे आप अभी शब्द दे सकती हैं।
1: बिल्कुल, तो मैं देती हूँ आज का, आज के शो का पहला शब्द आप सभी के सामने, और शब्द है हवा। यानी हवा शब्द से आप सभी मुझे लिख के गाने भेज सकते हैं, पर लाइव चैट रूम में ही भेजिएगा।
0: बिल्कुल
1: हवा,
0: तो इंजॉय कीजिए इस गाने को फिलहाल, और हवा शब्द से गाने लिख के भेजिए जल्दी से।

और एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मतलब एक शब्द भेज दिया है तो आप प्लीज वो दूसरा शब्द ना भेज, मतलब दूसरा गाना ना भेज, जैसे कि निशांत राय बोले जी अगर आपने एक गाना भेज दिया है तो फिर आप दूसरा गाना मत भेजा कीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक ही गाना एक बार भेजा कीजिए ताकि आदमी कंफ्यूज ना हो।

0: बिल्कुल कोई बुरा नहीं किया। वैसे आरजे वंशिका जी, गाना मुझे ये बहुत पसंद है, आपको कैसा लगा?
1: जी मुझे भी गाना बहुत अच्छा लगा। इसकी जो लय है इस गाने की, और इस गाने में जो गायिका ने जिस प्रकार से इसको पेश किया ना, दिल में उतर जाता है।
0: इनसे जो मतलब यानी आशा भोसले जी हैं, उनकी वो खनकती हुई आवाज मुझे बहुत प्यारी लगती है। ऐसे इसका एक और वर्जन है यानी कि कुमार शनवार का यज्ञ का, लेकिन मुझे ये वर्जन ज्यादा कुछ अच्छा लगता है, मैं हमेशा इसको सुनता हूँ। एक गाना मुझे और भी पसंद है, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये गाना भी। फिलहाल मैं तो कहूंगा कि हो सकेगा तो यानी बादल ये चांस अब जरूर दीजिएगा कि ये भी गाना जरूर आ जाए।
1: बिल्कुल आने वाले हैं, लिस्ट में ही हूं।
0: चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप बताइए आज के ये विनर में सबसे पहला किनका किनका आया हुआ है?
1: विनर में हमारे पास सबसे पहले अलिन कश्यप जी का गाना है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे कुछ कुछ लिसनर जैसे कि सरिता सिन्हा जी हैं और देवपाल मौर्य जी हैं, आप सभी मुझे चैट रूम में नहीं भेजे गाने, मुझे भेजे हैं व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप करिए मैसेजेस में, आप प्लीज वहां से मत भेजिए। और देवपाल जी, अगर आपका पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, जिन जिनका चैट रूम लॉग इन नहीं हो रहा है प्लीज हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पासवर्ड बता देंगे और आप चैट रूम से ही गाने हमें लिख के भेजिए, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सभी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे फिलहाल अब तो आज के यानी विनर बने हैं अनिल कश्यप जी।
1: अनिल कश्यप,
0: इनका गाना है ए हवा मेरे संग संग चल। और इस गाने के और भी है हमारे पास यानी डिमांड है, लेकिन फिलहाल राय बोले जी हाँ, तो फिलहाल यही गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, ए हवा मेरे संग संग चल। एंजॉय कीजिए भाई अनिल कश्यप जी, आते हैं इस गाने के बाद अगला शब्द लेकर। धन्यवाद
1: जी, बिल्कुल।

0: और आरजे वंशिका जी, अब अगला शब्द भी दे दीजिए प्लीज।
1: बिल्कुल, अगला शब्द मैं आप सभी के सामने दे रही हूँ। और अगला शब्द, जैसे कि आज यमन जी ने कहा था, चांद। चांद शब्द से मुझे गाने लेके भेजिए आप सभी लाइव चैट रूम के अंदर।
0: बिल्कुल, यानी कि चांद से तो भाई वो गाना आना चाहिए ना। और एक चीज और बता देता हूँ कि अच्छा भाई, अनिल कश्यप जी आपकी बात को जवाब मैं जरूर दूंगा।
1: और लाइव चैट रूम में जो बातचीत चल रही ना, उन पे भी नजर डालेंगे थोड़ी देर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: वैसे अर्जुवंशी का जी जो गाना चाहता था वो तो नहीं आया, बट दूसरे दोस्तों ने गाना और भेज दिया। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल जो गाना है हम उसी को एंजॉय करने वाले हैं। और
1: यहाँ पे फीडबैक्स भी आए हैं,
0: तो फीडबैक भी
1: जैसे कि यहाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे सरिता सिन्हा जी लिखती हैं कि वंशिका जी कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, बस ये कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है चैट रूम में कैसे आना है। इसका रास्ता तो बहुत इजी है,
0: तो चैट रूम में कैसे आना है जी बिल्कुल बता दीजिए, अच्छे से समझा दीजिए कि वो लोग भी चैट रूम में आ जाएं।
1: जी बिल्कुल, जिन जिनको चैट रूम का रास्ता नहीं मिल रहा आपको बता दी, ये रास्ता बड़ा इजी है। आप सभी को बस रेडियो हॉस्टा के एप्लीकेशन को खोलना है और सबसे नीचे यानी कि आपको राइट हैंड साइड के कॉर्नर में जैसे कि मैसेजेस है ना, उसके बराबर में आपको मोर का बटन दिखेगा यानी कि डॉट डॉट करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखेंगे जैसे सॉन्ग रिक्वेस्ट हो गया, लाइव चैट रूम हो गया, ब्लॉग हो गया, न्यूज़ हो गया, बट उसमें आपको लाइव चैट रूम वाले ऑप्शन में जाना है और जो आपकी आईडी का पासवर्ड रहेगा ना जिससे आप मैसेजेस मुझे भेजे ना, वही आपका नंबर आपका पासवर्ड आपको फिल करना है, लॉगिन करना है और आ जाना है चैट रूम में। बहुत इजी रास्ता है,
0: बिल्कुल बहुत ही आसान है। आप रेडियो हॉटस्टार का एप्लीकेशन को खोलिए और उसमें सबसे नीचे है वहाँ पे दाहिने साइड में देखिएगा लिखा होगा मोर, नीचे में लिखा होगा मोर और उसको खोलने पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले होगा वहाँ सॉन्ग रिक्वेस्ट होगा, उसके बाद यानी कि लीडर बोर्ड होगा, फिर यानी कि वहाँ पे शट आउट होगा वगैरह वगैरह। वहीं पे अगला जो उसमें नीचे में देखिएगा कहीं लिखा होगा लाइव लाइव चैट, लाइव चैट पर क्लिक कीजिए। बहुत से दोस्त अभी वहाँ पे लाइव चैट में इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ पे आइए, वहीं पे गाने पिक कर जवाब दीजिए। अच्छा, आज के ये विनर कौन हुए हैं इस गाने का?
1: जी हाँ, इस गाने के विनर हुए हैं राहुल पासी जी, जिन्होंने गाना भेजा है चांद छुपा बादल में। अच्छा। और इस गाने के साथ में मतलब संदीप सुतार जी भी हैं, अनिल कश्यप जी भी हैं और ज्योति खटवटे जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगी और निशांत राय भोले जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे। मतलब सभी के सभी लिस्टर्स इसी गाने को पसंद करने वाले हैं,
0: इसी गाने को हम प्ले करने वाले हैं। और एक चीज और बता दूं कि मेरे पास कुछ फीडबैक है, जैसे कि जुड़े हुए हैं यहाँ पे विष्णु चंद्र जी, वेलकम करते हैं आपका विष्णु चंद्र जी। मिसाल अंगद जी हैं, इनका भी वेलकम करते हैं और एमडी फैज आलम जी आपका भी वेलकम करते हैं और अशोक कुमार जी आपका भी वेलकम करते हैं और निशांत राय बोले जी हाँ आपका भी वेलकम है और हमारे बीरबल बघेल जी आपका भी वेलकम करते हैं। तो सभी का वेलकम करते हुए अगला गाना सुनवाते हैं जिसकी सबसे ज्यादा मतलब लोगों ने आंसर दिया है, चांद छुपा बादल में। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: चांद छुपा बादल में
0: बिल्कुल
1: शर्मा की जाना, बहुत अच्छा लगता है गाना,
0: एंजॉय कीजिए अभी।

0: और मैं बताना चाहूंगा आरजे वंशिका जी कि हमारे एम ताहिर साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज लिखा है इन चैट रूम में। वो लिखते हैं अमन खान जी और आरजे वंशिका जी, रेडियो हॉटस्टार पर आपकी जुगलबंदी और अंदाजे बयां का जवाब नहीं, आप दोनों की ये पेशकश बेहद दिलकश और उम्दा है जिसने श्रोताओं के दिलों को छू लिया है। थैंक यू सो मच। और हमारे सिद्दीकी सर जी भी जुड़े हैं, लेकिन सर जी प्लीज इन्हें चैट बॉक्स में आइए ना, मेहरबानी होगी आपकी। फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए।
1: एम ताहिर जी शुक्रिया आपके इन प्यारे प्यारे लफ्जों के लिए।

0: बिल्कुल, ये गाना भी कुछ और है, क्यों है ना?
1: बिल्कुल, ये गाना भी कुछ और है, चांद छिपा बादल में। इस गाने में जो फिल्माया गया है, जो कि सलमान खान जी, ऐश्वर्या राय जी पे, इसके पिक्चराइजेशन देखे ना आपने, देखा इस गाने को?
0: नहीं, मैंने तो इस फिल्म को भी नहीं देखा अभी तक, मुझे टाइम ही नहीं मिला।
1: जी देखिएगा जरूर, मूवी तो मैंने भी नहीं देखी पर गाना मैंने देखा है। इस गाने में जो ऐश्वर्या जी लग रही है, हाँ, क्या लगती है, बहुत ही प्यारी।
0: ओ, तो ऐश्वर्या तो है ही बहुत ही प्यारी, हम क्या ही कहें, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है ना।
1: जी हाँ, और इनके उनकी खूबसूरती ने इस गाने को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, और सभी लिसनर्स ने इस गाने को भेजा, उसके लिए शुक्रिया।
0: आपने अगला वर्ड नहीं दिया, ओ माय गॉड।
1: जी हाँ, अभी दे देती हूँ मैं अगला वर्ड आप सभी को।
0: हाँ, तो आप अगला वर्ड यानी कि दीजिए, तब तक मैं वो गाना मैं प्ले करता हूँ, क्योंकि क्योंकि मतलब ना, वो क्या हुआ है कि आप लोगों ने नहीं भेजा, लेकिन मुझे मौका मिल गया गाना सुनने का, है ना।
1: बिल्कुल, तो सुनवाइए अपनी पसंद का वो प्यारा सा गाना, जो कि मैं भी सुनना चाहूंगी और सभी।
0: मैं मतलब वो तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन फिलहाल
1: शब्द बता देती हूँ। शब्द है मौसम, यानी कि मौसम बदलना है ना, आप सभी की तरफ भी ऐसे चला होगा, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, तो मौसम ही शब्द लेके आई हूँ आप सभी के लिए, और मौसम शब्द पे मुझे गाने लेके भेजिए। और मुझे पता है कि एक गाना है जो कि जरूर आएगा, चाहे वो पहले ना आए पर बाद में आए, पर आएगा जरूर। अच्छा। और कौन भेजने वाला है वो भी मुझे पता है, तो मैं लिख के भेज रही हूँ और बता रही हूँ आप सभी को, मौसम शब्द से गाने लिख के भेजिए।
0: हाँ जी, तो फिलहाल मैं अपनी पसंद का गाना सुनवाता हूँ, और तब तक आप लोग मौसम पर गाना भेजते रहिए, एंजॉय कीजिए इस गाने को जो मुझे बेहद पसंद है। धन्यवाद,
1: एंजॉय कीजिए।

इस गाने की एक एक लाइन बहुत ही प्यारी है। बिल्कुल

0: और आर्यवंशिका जी एक मिनट, और हाँ आर्यवंशिका जी जरा मुझे बता दिए अगला यानी कि इसमें कौन है, विनर कौन है?
1: जी विनर तो हमारे पास बने हैं सोनू गौतम जी, बट उसके अलावा भी एक गाना है जो कि हमें मतलब अराउंड लाइक 5 या 6 लिस्टर्स ने मुझे लिख के भेजा है।
0: जी वो तो जरूर मैं, जी मैं जरूर प्ले करूंगा उसको भी, लेकिन फिलहाल ये विनर कौन हुए हैं हमारे?
1: अभी तो सोनू गौतम जी हुए।
0: सोनू गौतम जी का ही गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, तो फिलहाल इस गाने के बाद ओके
1: जी
0: थोड़ा सा और इंजॉय करते हैं इस गाने को, फिर सुनवाते हैं सोनू गौतम जी।

0: फिलहाल ये गाना सुन लीजिए, मौसम का जादू है मितवा। इसके बाद से अगला गाना मैं प्ले करूंगा जो इमेजिनेटी में है।
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: तो आरजे वंशिका जी, आपने ये बताया नहीं कि वो मेजोरिटी वाले गाने कौन से हैं?
1: जी, ये मेजोरिटी वाला गाना है देवपाल मौर्य जी, राहुल पासी जी ने सभी ने ये गाना लिख के भेजा, जो की है मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, ये अच्छा, गाने के बोल है।
0: ओहो, ये
1: और जो गाना मैं ढूंढ रही थी वो किसी ने नहीं भेजा।
0: अच्छी बात है, फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए प्लीज।

0: और फिलहाल इन मौसम का तो जादू यानी चल गया है, अगला गाना सुनवाई देते हैं जो मेजोरिटी में पहुंचा हुआ है। मौसम की तरह तुम तो बदल जाओगे, बिल्कुल सुना दिया जाए
1: जी, बिल्कुल
0: ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने,
1: एंजॉय कीजिए सभी
0: जी, धन्यवाद।

0: और फिलहाल आरजे वंशिका जी अगला शब्द दे दीजिए प्लीज।
1: जी अगला शब्द आप सभी के सामने ये रहा जो कि है सावन, यानी कि सावन का महीना भी चला गया है, भादो आने वाला है और मौसम भी बदल रहा है। तो सावन शब्द से मुझे गाने लिख के भेजिए हमारे रेडियो हॉटस्टार के चैट रूम के अंदर।
0: ओके, फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए और सावन पर भेजिए।

0: भाई हम तो बदलने वालों में से नहीं है, लेकिन अब क्या करें, हालात मजबूर कर देता है ना बदलने के लिए। वैसे गाना बहुत ही प्यारा था, क्यों ना अर्जवंशिका जी?
1: बिल्कुल अमन जी, सही बात कही आपने, गाना बहुत ही प्यारा था। और इस गाने के साथ साथ में अभी लिसनर्स ने जो बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं मुझे चैट रूम में, उसको पढ़ पढ़ के भी हंसी आ रही है। काफी मतलब एंजॉयमेंट चल रहा है सभी के बीच।
0: अच्छी बात है ना, ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम करने का मजा ही नहीं आएगा ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
0: ओके, और इसके बताइए आज के विनर कौन हुए हैं इस गाने के लिए?
1: जी हाँ बिल्कुल, दोबारा से विनर बने सोनू गौतम जी, और सभी लिसनर्स इसी गाने के साथ आए हैं। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया,
0: तो ठीक है, अब लगता है कि मुझे भी सावन के झूलों ने झूला दिया है और हमको भी झूलना झूलने का मन कर रहा है।
1: कभी आपने मतलब बचपन में सावन के झूलों में एंजॉय किया?
0: अरे हम बहुत झूला झूले हैं, बहुत मजा आया हुआ है।
1: हम भी बहुत, मतलब घर में ऐसा होता था कि जो पंखे के कुंडे होते हैं ना, उनमें अपनी हमारी मम्मी जी झूले लगा दिया करती थी, और उसी में हम मतलब झूलते जाते वही सावन के झूले, मतलब कोई सजा दिया तो उसको वो मतलब फेस्टिवल वाला हो गया।
0: फिलहाल हमें उस यानी झूले पर यानी हमें डर लगता है, जो यानी कि वो लंबा वाला झूला होता है ना, मैं उस पर कभी नहीं बैठा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है।
1: अच्छा, जो मतलब जो बाहर मतलब
0: हाँ फेस्टिवल पार्क
1: में होते हैं,
0: हाँ जो यानी पार्क में वाले होते हैं ना वो झूले, उस पर मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा।
1: अच्छा, उन पे तो मैं भी नहीं बैठी हूँ, काफी बड़े होते हैं।
0: इस गाने को एंजॉय करते हैं। ओके, ना तो हम लोग की बातें,
1: आप सभी झूलों पे बैठी है।
0: ओके।

0: बिल्कुल दिल को धड़का दिया है फिलहाल। अगला सवाल कर लीजिए प्लीज।
1: जी बिल्कुल, अगला शब्द मैं आप सभी के सामने डाल रही हूँ जो कि मतलब अभी तो सारे शब्द चल ही रहे हैं, मौसम रिलेटेड हवा हो चुकी है, तो अब अगला शब्द क्या हो सकता है, वो है बादल।
0: अच्छा जी, बादल शब्द से बिल्कुल, बादल पे गाने भेजिए भाई, बादल में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। फिलहाल गाने एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार अमन और आरजे वंशिका के साथ जो आपको दीवाना बना रहे हैं।

0: और यहाँ तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो गई भाई, क्योंकि ज्योति खटवारी जी ने उसी गाने को भेज दिया है, जो गाना हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है गाना, लेकिन यानी विनर तो यही है, लेकिन कोई बात नहीं है, काम कीजिए, यानी ज्योति खटवारी जी अपना गाना चेंज कीजिए, विनर आप ही रहेंगी, गाना आपका बदल जाएगा फिर, है ना?
1: बिल्कुल, चेंज करके आप भेज दीजिए ज्योति जी गाना चैटरूम के अंदर ही।

0: जी बिल्कुल अच्छी बात है कि हमारी ज्योति खटवड़ जी ने अपना गाना चेंज कर दिया और भेज दिया उड़ते बादल से पूछो गाना, ये भी बहुत ही प्यारा है। वैसे और कौन कौन से गाने यूएन मेजोरिटी में, जरा भी बता दीजिए प्लीज।
1: ओके जी, मैं देख लेती हूँ। और वैसे इसी जो ज्योति जी ने गाना भेजा है, वो प्रीति राय दास जी ने भी सेम टू सेम गाना, सुन गौतम जी ने भी सेम टू सेम गाना भेजा हुआ है।
0: चलिए तो एक काम करते हैं, इसी गाने को प्ले करते हैं। और अब यानी मैंने इसी गाने के लिए सबसे ज्यादा यानी कि मेजोरिटी आई है, इसलिए सबसे इसी को सुनवाते हैं। इंजॉय कीजिए, है कि नहीं? और ये गाना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। इंजॉय कीजिए।

0: और आर्यवंशिका जी, एक चीज मुझे अभी मतलब आ रहा है याद कि जैसे कि जब मेरी सुंदरता की मुरत जी आती हैं तो मुझे बेहद खुशी मिलती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनका नाम आज से मैं रख देता हूँ खुशी। मैं उन्हें खुशी भी कहूँगा। ओके, क्यों अच्छा है ना नाम?
1: नाम तो बहुत ही प्यारा है।
0: हाँ, तो मैं अब अपनी सुंदरता की मुरत जी को अब मैं ये निके खुशी नाम से भी मैं पुकारा करूँगा। फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए। और एक बात अर्जवंशिका जी, अगला सवाल भी कर लीजिए प्लीज यहीं पे।
1: जी बिल्कुल, अगला शब्द मैं आप सभी से बता देती हूँ, जो कि अगला शब्द है हस्ता। हंसने शब्द से मुझे गाने लिख दीजिए, यानी कि हंसना हो गया, हंसता हुआ हो गया, मतलब हंसना आना चाहिए उसमें। हंसना शब्द से मुझे गाना लिख दीजिए।
0: फिलहाल एंजॉय कीजिए गाने को। धन्यवाद।

0: लेकिन अर्जवंशिका जी इस गाने में बड़ा बहुत कंफ्यूजन है भाई।
1: कंफ्यूजन हो चुका है।
0: कौन सा गाना प्ले किया जाए जरा, मैं भी कंफ्यूज हूं, आप ही बता दीजिए।
1: जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे सही गाना जो कि सबसे पहले पहुँचा है वो है राहुल पासे जी का, कभी हंसना है तो कभी रोना है।
0: वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे एक और गाना दिखाई दे रहा है, तू जो हंस हंस के सनम मुझको से बात करती है, बस ये बात जमाने को बुरी लगती है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। दो दोस्तों ने भेजा है,
1: प्रीति रायदास जी ने और बागेश्वर निशा जी ने।
0: जी बहुत ही कंफ्यूजन है, फिलहाल क्या किया जाए बताइएगा।
1: इसका हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो राहुल जी ने भेजा है, बट जो कि गाना
0: एक काम करते हैं जो यानी कि वो हंसने वाला गाना प्ले करने के बाद तू जो हंस हंस के सनम वो सुनवा देते हैं, यानी सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। एंजॉय कीजिए इस गाने को। ओके okay.

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं वर्ड मस्ती विद आरजे वंशिका। अभी चल रही है खास वर्ड मस्ती जिसमें है एक मजेदार ट्विस्ट। तो जुड़े रहिए आरजे वंशिका के साथ और तैयार रहिए कुछ हटकर सुनने, सोचने और मस्ती करने के लिए, क्योंकि इस वर्ड मस्ती में हर शब्द के साथ छुपा है एक नया ट्विस्ट। आप भी इस वर्ड मस्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी रेडियो हॉटस्टार की चैट रूम से और बन सकती है इस मजेदार मस्ती का हिस्सा। तो अभी जुड़िए, अपनी बात रखिए और देखिए वर्ड मस्ती का ये ट्विस्ट आपको कहां तक ले जाता है। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: ओके जी, तो ये बता दीजिए कि यानी सेकंड राउंड ये कब से स्टार्ट करना है?
2: सेकंड राउंड एक गाने के बाद, यानी कि जैसे कि अभी गाना है तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है,
1: और उससे पहले वो हंसनी भी तो है जो जिन्होंने सबसे पहले दो दोस्तों ने भेजा है हमारे, यानी सोनू गौतम जी और सुनील कुमार जी ने। तो पहले उस गाने को थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, फिर इस गाने को प्ले करूंगा। ओके,
2: और यहाँ एक मैसेज आया है एम ताहिर जी की तरफ से आपके लिए।
1: बताते
2: हैं, अमन जी आपकी नजर है खुशी पर, खुश अल्फाज, खुशी नाम ही चेहरे पर नूर लाता है। आपकी सुंदरता क्यों रचित लिखे हैं ये?
1: जी हाँ हाँ बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच।
2: और उदासी का हर
1: आपके प्यारे मैसेज के लिए।
2: और लिखते हैं, उदासी का हर बादल दूर हटाता है, जिंदगी की राहों में बिखेर कर महक, ये नाम हर दिल को मुस्कुराना सिखाता है।
1: महक भी अच्छा नाम है, वो खुशी के लिए ही होता है कि नहीं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, नए नाम सजेस्ट करें हमारे सभी लिसनर्स।
1: फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय कीजिए। सभी दोस्तों के लिए कहूंगा, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार अमन के साथ एंड आरजे वंशिका के साथ जो दीवाना बनाते हैं।

0: और आर्यवंशी का जी, मैं चाहता हूँ कि एक दो शब्द और बताएं, उसके बाद से सेकंड राउंड स्टार्ट किया जाए। क्यों, क्या कह रही हैं?
1: बिल्कुल, एक काम करते हैं, दो तीन शब्द और, यानी कि कुछ गाने और यानी 1 बजे स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड को।
0: हाँ, सेकंड राउंड को 1 बजे स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे के लिए वो रहेगा। फिलहाल थोड़ा सा और इसमें इंजॉय करते हैं और अगला गाना सुनवाते हैं। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है।
1: इंजॉय
0: कीजिए इस गाने को भाई।

0: फिलहाल तो सवाल कीजिए अर्ज वंशिका जी।
1: बिल्कुल, अगला शब्द आप सभी के सामने ये रहा और शब्द है सोचना, यानी कि सोच कुछ भी लिख सकते हैं आप सभी, यानी उस गाने के अंदर, यानी गाना जो आप भेजेंगे उसके टाइटल में सोच या सोचना कुछ भी हो सकता है। तो सोचना शब्द से मुझे गाने लिख के भेजिए हमारे रेडियो आस्था के लाइव चैट रूम के अंदर।
0: बिल्कुल, और इन सोचते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना ले।
1: दीवाना बना ले।
0: एंजॉय कीजिए गाने को।

0: ओके कोई बात नहीं, जमाने को बुरी लगने दीजिए। अगला ये बताइए जवाब किनका है सबसे पहले।
1: जी फिर से 5G की स्पीड से हमारे पास सोनू गौतम जी ने जवाब पहुंचाया
0: है। भाई सोनू गौतम जी को तो मानना पड़ेगा, कहाँ से लगता है कहाँ बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं इसलिए 5G नेटवर्क के साथ
1: बहुत ज्यादा बात की। और सभी के सभी लिसनर्स मतलब सभी यही सोच रहे हैं कि वो अपनों अपने वाले को या अपनी वाली को प्यार करे कि नहीं, मतलब डिसाइड चल रहा है सभी का। सोनू गौतम
0: भाई हमें सोचना नहीं है, हमें तो करना है। ओके जी तो
1: बिल्कुल
0: तो इसमें है यानी कि जो मतलब यानी कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी कि मेजोरिटी में यही गाना पहुंचा हुआ है, यानी कि दूसरा गाने के बारे में हमको सोचना भी नहीं है फिलहाल,
1: सोचना ही नहीं पड़ेगा।
0: इसी गाने को एंजॉय कीजिए सभी दोस्त, है कि नहीं।
1: और काजल जकास जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ।
0: अच्छा जी तो काजल जकास जी का भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं, फिलहाल थोड़ा सा गाना एंजॉय करते हैं। ओके
1: जी
0: और इसके बाद गाना प्ले करते हैं।

0: और फिलहाल आरजे वंशिका जी अगला शब्द दे दीजिए प्लीज।
1: बिल्कुल, अगला शब्द मैं दे रही हूँ, यानी कि ये कह रहे ना, सोचेंगे कि हम प्यार करेंगे नहीं तो वो अपनी महबूब या महबूबा को प्यार करेंगे, तो अगला शब्द यही है महबूब, यानी महबूब शब्द से हमें गाने लिख के भेजिए।
0: ओके, एंजॉय कीजिए फिलहाल इस गाने को थोड़ा और।

0: वैसे तो लग रहा है कि एक बार विनर फिर से बन चुके हैं हमारे सोनू गौतम जी। वैसे
1: सोनू गौतम जी
0: इन मेजोरिटी में गाना कौन सा है ये भी बता दीजिए।
1: नहीं वैसे सबसे पहले हमारे विनर बने एम ताहिर जी।
0: अच्छा एम ताहिर जी है,
1: वो ऋषि कपूर जी के पीछे छिप गए।
0: अच्छा ओहो हो मेरे महबूब, अच्छा महबूब मेरे, ओके हाँ एम ताहिर जी मैंने तो देखा ही नहीं सच में। महबूब मेरे महबूब मेरे है ना।
1: बिल्कुल okay. और ऋषि कपूर जी ने ताहिर जी को थोड़ा सा अपनी छत्र छाया में छिपा लिया।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये बता दीजिए और यानी कि मेजोरिटी में कौन सा गाना है।
1: मेजोरिटी में हमारे पास गाना जो आ रखा है मेरे महबूब मेरे, ये वाला गाना मैं आ रखा है हमारे पास, मैं देख लेती हूँ। ओ मेरी महबूबा,
0: ओ मेरी
1: तीन बार
0: ठीक है, ओ मेरी महबूबा मैं प्ले करूंगा। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। ओके

0: और आरजे वंशिका जी, आपकी बहुत ही पारखी नजर है भाई, मैं तो देख ही नहीं पाया, आपने देख लिया, तो मुझसे गलती होने वाली थी।
1: हो जाता है जी।
0: थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया। और यहाँ पे यानी विजयराज जी जुड़े हुए हैं भाई। विजयराज जी, मैं तो यही कहूँगा कि यानी चैट रूम से जुड़िए, और हमारे बीरबल बघेल जी आप भी वहीं पे जुड़िए प्लीज, अच्छा लगेगा। फिलहाल गाना सुनवाते हैं आपको, ये वाला महबूब मेरे, महबूब मेरे, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: और इसके बाद यानी कि मेजरेटी वाले गाने को सुनवाते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद से आप सवाल कीजिएगा इसी गाने में, महबूब महबूबा ओ महबूबा में। ओके,
1: ओ मेरी महबूबा।
0: ओके, एंजॉय कीजिए इस गाने को, ओ मेरी महबूबा।

0: फिलहाल सवाल कर दीजिए जी।
1: बिल्कुल, और अगला शब्द आप सभी के सामने ये रहा 7 करोड़ के लिए। दीवाना, दीवाना शब्द से गाने लेके भेजिए आप सभी हमें।
0: ओके जी, दीवाना से जल्दी से गाने भेजिए मुझे, यानी कि चैट रूम में। ओके, है ना।
1: और ज्योति जी, अगर आप कार्यक्रम को सुन रही हैं तो आप पता है आपको कौन सा गाना भेज रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: एंजॉय।
0: बिल्कुल।

और फाइनली एक बार फिर से सोनू गौतम जी आ ही गए है कि नहीं दीवाना, मैं तेरा दीवाना लेकर माय गॉड। वैसे भी बहुत से है, फिलहाल इसी गाने को प्ले करते हैं और इसके बाद से देखते हैं मेजोरिटी में किनका गाना आता है, फिर सुनवाते हैं। ओके

0: और फिलहाल इसी गाने के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि मेजोरिटी में कोई गाना नहीं है और इसके बाद सवाल करने के लिए तैयार रहिएगा। ओके
1: जी बिल्कुल।

0: के तो अर्जवंशिका जी अगला सवाल भी कर ही लीजिए प्लीज।
1: जी बिल्कुल, अगला शब्द भी आप सभी के सामने मैं अभी लाने वाली हूँ। देखिए दीवाना हो चुका है, महबूब हो चुका है,
0: और एक बात ये भी बता दूं कि ये आखिरी शब्द होगा क्योंकि इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है।
1: बिल्कुल, इसके बाद आप सभी को मूवीज ऑल राउंड सुनने को मिला है। तो आज के फर्स्ट राउंड का आखिरी शब्द है सनम।
0: सनम
1: शब्द से गाने लिखे।
0: ओके, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए और सनम शब्द गाने लिखे।

0: ओ माय गॉड, एक बार फिर से सोनू गौतम जी बाजी मार चुके हैं और साथ ही साथ ओ सनम भी तो गाना मैं जरूर प्ले करूंगा। ज्योति जी भी हैं और प्रीति रायदास जी भी हैं, तो सुनाएंगे इस गाने को भी। लेकिन फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते रहिए। और सोनू गौतम जी भाई, बधाई हो आपको विनर बनने के लिए।
1: और अमन जी, आपको एक बात पता है?
0: जी जी,
1: सोनू गौतम जी हमेशा जैसे फास्ट का आंसर भेजते हैं, हमारे एक लिस्टर ने कभी लिख के भेजा था कि सोनू जी में भी जो वो जो टेलीफोन का पोल होता है ना, उसी के साथ हम बैठे हुए हैं।
0: एंजॉय कीजिए गाने को।

0: ओके जी, तो फिलहाल ये सनम मेरे हमराज के साथ ओ सनम में सुनवाने वाला हूँ। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। और ये मतलब ये सेकंड मतलब यहाँ ये यानी फर्स्ट राउंड का आखिरी गाना प्ले होगा और उसके बाद से सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है कि नहीं?
1: बिल्कुल, आखिरी दो गाने और उसके बाद मूवीज वाला राउंड।
0: बिल्कुल।

अब बारी है राउंड टू की। इस राउंड में आपको दिया जाएगा एक बॉलीवुड मूवी का नाम। आपको करना बस इतना है, जैसे ही चैट रूम में मूवी का नाम आए, उस मूवी का कोई भी पसंदीदा गाना हमें सबसे पहले लिखकर चैट रूम में भेजना है। जो प्रतिभागी सबसे पहले सही गाना लिखकर भेजेंगे, उनकी फरमाइश का वही गाना प्ले किया जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि इस राउंड में देखना है कि आपको अपनी पसंदीदा फिल्मों के गाने कितनी जल्दी याद आते हैं। तो ध्यान रखिए रेडियो हॉटस्टार की चैट रूम पर, क्योंकि राउंड टू अब शुरू होने वाला है।

0: फिलहाल सेकंड राउंड का ये पहला सवाल कर लीजिए जी।
1: जी बिल्कुल, सेकंड राउंड यानी कि मूवीज वाला राउंड। तो पहली मूवी का नाम आप सबके सामने आ रहा है, वो है बाजीगर। बाजीगर 1993 की मूवी है और उसका गाना आप लिख के हमें वीडियो हॉस्टा के चैट रूम में फटाफट से भेज दीजिए।
0: बिल्कुल, और बाजीगर के मुझे सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं। ओ माय गॉड, जो मैं चाहता हूँ वो आ जाए ना, मजा आ जाएगा। फिलहाल एंजॉय इस गाने को।

0: ये बिल्कुल यानी क्लियर हो गया कि दो गाने प्ले होने वाला है, एक तो भाई हमारे एम ताहिर जी का वो यानी समझ कर चांद, और दूसरा तो बाजीगर वो बाजीगर, क्योंकि सभी दोस्तों ने किसी को भेजा है। वैसे जो चाहता था वो तो नहीं
1: सबसे पहले वैसे सोन गौतम जी का है।
0: व्हाट, ओह माय गॉड, किताबे भूसी, मैं तो देखा ही नहीं। ओह माय गॉड, ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए
1: जी। अरे इतने

0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि हमारे सोनू गौतम जी का वो 5G नहीं 8G है, किसी ने कहा था ग्रुप में, और ये यानी कि उसी यानी कि टावर पर जाकर बैठे हुए यहाँ पे फास्ट चल रहे एकदम बिल्कुल। और किताबें बहुत सी भी आ चुकी हैं, लेकिन मुझे समझ के 4 गुना तैयारी थी, मेरा ध्यान वहीं पे गया
1: मुझे
0: था। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं और उसके बाद से बाजीगर वाला गाना प्ले करते हैं। एंजॉय कीजिए।
1: बिल्कुल
0: ओके।
1: और एक फीडबैक।
0: अच्छा यानी फीडबैक है, ओके तो बता दीजिए कौन सा फीडबैक है।
1: यहाँ विजय राजी लिखते हैं, प्यार तो जिंदगी का एक अफसाना है, इसका अपना ही एक तराना है।
0: अच्छा।
1: सबको मालूम है कि मिलेंगे सिर्फ आंसू।
0: अच्छा।
1: पर ना जाने क्यों दुनिया में हर कोई रेडियो हॉटस्टार का ही दीवाना है।
0: हाँ, क्योंकि रेडियो हॉटस्टार दीवाना बना देता है ना, इसलिए
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल ये गाना।

0: तो अर्जवंशी का जी फिलहाल जो अगला यानी मेजोरिटी में गाना आया हुआ है मैं उसी को प्ले करता हूँ, लेकिन मैं सुनना चाहता था समझ कर चांद जिसको आसमान ने, वो गाना मुझे बेहद ही यानी अच्छा लगता है, बहुत ही बहुत ज्यादा
1: तो जरूर प्ले कीजिए ना।
0: ना ना ना ना ना, ना मैं रूल रूल इज रूल, फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए बाजीगर वाला। ओके
1: एंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल अगला फिल्म का नाम दीजिए और ये भी बता दीजिए कि इस गाने में कौन कौन से दोस्त शामिल थे।
1: बाजीगर ओ बाजीगर, इस गाने में अराउंड लाइक हमारे पास 5 या 6 लिस्नर्स शामिल थे जिनका नाम मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। पहला नाम है रोशन अली जी और इसी गाने में शामिल थी ज्योति खटवटे जी, गोपाल पाटीदार जी, अशोक कुमार जी, सुनील कुमार जी, बागेश्वर निषाद जी, यानी कि सभी के सभी बाजीगर हैं, मंगेश देशमुख जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, यानी कि ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 लिस्नर्स इस गाने में शामिल थे।
0: ओके, तो फिलहाल अगला कौन सा फिल्म का नाम दे रही हैं आप?
1: अगली मूवी का नाम है हम आपकी हैं कौन, हम आपकी हैं कौन के मूवी का।
0: क्या बात है
1: जी। हाँ, इस मूवी के भी बहुत प्यारे प्यारे गाने आने वाले हैं और समझकर चांद वाला गाना मुझे भी सुनने का काफी मन था।
0: कोई बात नहीं, इस गाने को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।

0: बिल्कुल, लेकिन इस बार फिर से बाजी मारे हैं सोनू गौतम जी, है ना?
1: जी बिल्कुल, ये तो पूरा फिक्सअप हो चुका है कि सोनू जी हमेशा बाजी मारे हैं, ऑलमोस्ट लाइक।
0: ओके जी, फिलहाल ये बताइए कि और भी बहुत से दोस्त इस गाने में शामिल हो रहे हैं, उनका भी नाम बता दीजिए।
1: बिल्कुल, सभी के दीदी दीवाने, दीदी तेरा देवर, सभी के देवर दीवाने हो रहे हैं। और ये प्यारा सा गाना सोनू गौतम जी, संदीप सितार जी, एम ताही जी, सुनील कुमार जी और इसके साथ साथ रोशनी कुमारी जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, स्वागत है आपका। और ये भी शामिल है इस गाने में, अशोक कुमार जी हैं, सरिता सिन्हा जी हैं और निशांत राय बोले जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, मतलब बहुत सारे लिस्नर्स हमारे साथ ज्वाइन हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशबू कुमारी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है।
0: ओके जी, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और फिलहाल तो इस गाने को मैं सुनवाता हूँ, दीदी तेरा देवर दीवाना,
1: दीवाना
0: बिल्कुल।

0: लेकिन आरजे वंशिका जी, यहीं पे अगला इन फिल्म का नाम भी बता दीजिए।
1: बिल्कुल, अभी फिल्म का नाम आप सभी के सामने ये रहा, जो कि है बल्मा। बल्मा 1993 मूवी का गाना। आप
0: हाँ, इसके सभी गाने बहुत पसंद है जी, मुझे मजा आने वाला है आज के सभी गाने सुन सुन के। धन्यवाद।

0: तो आरजे वंशिका जी बता दीजिए कि इसमें यानी ये कौन कौन से मेजोरिटी वाले गाने हैं। वैसे तो एक तो गाना जरूर प्ले होगा जो सबसे पहले आया है, अजय भगत जी का अगर जिंदगी हो। जी
1: अगर जिंदगी हो अजय भगत जी का, आज तो बाजी मारे हैं ये। और इसके साथ में जो कि गाना है जो कि आज के अगर जिंदगी हो में मतलब ज्योति खटवटे जी और सोनू गौतम जी भी शामिल हैं और एम ताहिर जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे।
0: ओके, और इसके अलावा कोई मेजोरिटी वाले गाने नहीं है? कोई बात नहीं, अगर जिंदगी हो सिर्फ प्ले होगा। ओके, फिर अगला फिल्म दिया जाएगा, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, ये गाना भी बहुत ही प्यारा है। वैसे अगला फिल्म का नाम भी बता दीजिए प्लीज।
1: जी, अगली मूवी का नाम है और प्यार हो गया, यानी 1997 की मूवी।
0: ये भी मेरा फेवरेट गाना है। थैंक यू सो मच इस ऐसे ऐसे फिल्मों के नाम चुन के लाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्योंकि जब इन फिल्मों के नाम अच्छे होंगे तो गाने भी ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे ना। हाय, थैंक यू सो मच, एक बार फिर से थैंक यू। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल दो गाने आ चुके हैं, एक तो भाई यानी कि थोड़ा सा पगला थोड़ा सियाना हमारे सोनू गौतम जी का, और दूसरा तो भाई कोई जाने कोई ना जाने, ये भी यानी कि मेजोरिटी में है, दोनों गाने प्ले होंगे है कि नहीं?
1: मेरी सांसों में बसा है ये वाला गाना, आप सभी ने नहीं भेजा मुझे सुनना था।
0: कोई बात नहीं, इस गाने का जो मुझे चाहिए वो आ गया है ना, फिलहाल इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो और अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, गाना बहुत ही प्यारा है। और तो
1: बिल्कुल
0: जुड़ चुकी है आमना खान जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आमना खान जी आपका भी।
1: और लिखती हैं कि आज वंशिका जी आप भी हैं? जी हाँ, मैं यहीं बैठी हुई हूँ।
0: फिलहाल अगला गाना एंजॉय करवाते हैं आप सभी को, थोड़ा सा पगला थोड़ा सयाना, हमारे सोनू गौतम जी का, ये जो मतलब जिन्होंने सबसे पहले भेजा था, भाई क्या बात है, आज तो बाजी मार चुके हैं सोनू गौतम जी, बहुत बहुत बधाई हो।
1: इसी गाने में बागेश्वर जी भी और सुनील कुमार जी भी इसी गाने में शामिल हैं।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तब तो ये और अच्छी बात है। लेकिन अगला गाना भी जरूर प्ले होगा, कोई जाने कोई ना जाने, दो परवाने होते हैं दीवाने। फिलहाल ये गाना।

0: वैसे फिलहाल अगला सवाल कर लीजिए, अगला कौन सा इस फिल्म का नाम दे रही हैं आप?
1: बिल्कुल, अब चलते हैं थोड़ा ओल्ड इस गोल की तरफ। तो अगली मूवी का नाम रहेगा निकाह, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी। निकाह मूवी के गाने लिखे भेजे होंगे आप सभी को रेडियो हॉटस्टार की चैट रूम के अंदर।
0: ओके, फिलहाल इस गाने को सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, अमन और आरजे बंसिका जी के साथ, जो अब दीवाना बना दे।
1: दीवाना बना दे।

0: और इस बार सबसे मेजोरिटी में गाना पहुंचा हुआ है, दिल के हर बातों में भाग है, मेरे भी हाथों में भाग है।
1: पता नहीं क्यों सभी।
0: फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए इस गाने को भी। ओके धन्यवाद। और हाँ, ये विनर कौन हुए हैं एक बार फिर से सुनो गौतम जी।
1: सुनो गौतम जी।
0: और साथ में और कौन कौन से हैं उनका भी नाम बता दीजिए।
1: राहुल पासी जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, अजय भगत जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, और बागेश्वर जी हैं, और राहुल पासी जी हैं, मतलब सभी दिल के अरमां आंसू में बाहर
0: सभी के बाहर हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए गाने को।

0: ओके, फिलहाल तो ये दिल के अरमा सभी के आंसुओं में बह गए हैं और
1: पर सभी सभी इतना सैड हो गए हैं, मतलब सभी को रुला दिया है मैंने। मैं कहना चाहूंगी अब जो रोए हैं ना तो उनको डांस भी करवाऊंगी जरूर मैं जोड़ी नंबर वन मूवी के गानों पे।
0: जी बिल्कुल, तो अगला गाना फिर एक बार जीत चुके हैं
1: सोनू गौतम जी
0: और सभी भी हैं इसमें, है कि नहीं?
1: बिल्कुल, तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी बिंदिया इस वाले गाने में शामिल है अजय भगत जी, सुनील कुमार जी शामिल रहेंगे और निशांत राय बोले जी और जी।
0: फिलहाल ये गाना थोड़ा सा आते हैं लोग, है ना?

0: और फिलहाल अगला फिल्म का नाम ही बता दीजिए
1: जी। अगली मूवी का नाम है मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया मूवी के गाने लेके भेजिए हमारे रेडियो हॉटस्टार की लाइव चैट।
0: हमको तो भाई यानी कबूतर कबूतर जानने वाला सुनने का मन कर रहा है। फिलहाल ये गाना

0: ओके जी, अब तो दो गाने यानी कि कंफर्म हो गए, एक तो ज्योति खटवड़े जी का और एक जो मेजोरिटी में पहुंचा हुआ है कबूतर जाए। अब तो कबूतर को उड़ा कर रहेंगे हम, भेजेंगे
1: बिल्कुल।
0: ओके,
1: पहले बिंदिया निंदिया उड़ा के ले गई थी, अब कबूतर
0: कबूतर को भी उड़ाते हैं, बिल्कुल उड़ाएंगे अभी।

0: फिलहाल तो कबूतर उड़ा दिए हैं, अब अगला फिल्म का नाम ही बता दीजिए आप।
1: बिल्कुल, कबूतर उड़ा दिया, मेरा मन कर रहा है कि तोते और मैना को भी लाना चाहिए। अच्छा। तो अगली मूवी का नाम है हलचल 1995
0: के। अच्छा जी, ओके, हलचल वाला। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए और देखते हैं कौन सा गाना आता है दोस्तों का, ये गाना
1: तो मैना उड़ाने चाहिए।

0: और जो वंशिका जी आपने कहा कि यानी कि तोता मैना उड़ाना है और फिलहाल हमारे सोनू गौतम जी भाई भेजे दिए, मानना पड़ेगा भाई क्या टैलेंट है, क्या दिमाग है, आई सैल्यूट यू भाई, मानना पड़ेगा आपको, है कि नहीं
1: सोनू गौतम? बिल्कुल सही बात कही है आपने। और अमन जी मैं एक बात पूछना चाहूंगी, कभी आपने कबूतर को हाथ में लिया है?
0: नहीं, कबूतर को हाथ में नहीं लिया है, मैंने कभी नहीं उड़ाया है, लेकिन मतलब मेरा तो बहुत मन करता है ना, एक्चुअली मैं मतलब इन सब यानी कि पक्षियों को मैं बिल्कुल यानी कि पकड़ना नहीं चाहता हूँ, इनको आज़ादी रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग आज़ादी के लायक है सिर्फ।
1: बिल्कुल सही बात है, बट मैंने एक बार कबूतर को हाथ में लिया है, क्योंकि मैंने एक घायल कबूतर की ना जान बचाई थी।
0: अच्छा,
1: जब का मुझे पर याद आ गया।
0: ओके, फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल ये गाना मैं तेरे मन की मैना होती है और
1: गाना हमारे पास।
0: हाँ, ये गाना यानी कि किस किस दोस्तों ने भेजा है?
1: ये भेजा है सुन गौतम जी ने, राहुल पासी जी ने, और इसके साथ में सभी प्रकार जी तो बहुत शॉर्टकट करें, गाना ही लेके भेज दिए हैं और इसके साथ साथ में बागेश्वर निषाद जी भी इस गाने में शामिल रहेंगे, राजेश कुमार जी भी इस गाने में शामिल रहेंगे, निशांत राय बोले जी, मतलब सभी मैना और तोता को पकड़ के लिए आए हैं।
0: बिल्कुल, तो फिलहाल गाने को एंजॉय किया जाए। ओके,
1: जय जी जी।

0: और आर्यवंशिका जी आज का आखिरी सवाल भी पूछ लीजिए।
1: बिल्कुल, और आखिरी सवाल है, यानी आखिरी मूवी का नाम है रंग 1983, और इस मूवी का एक गाना है, जी हाँ रंग मूवी, और इस मूवी का एक गाना है, अगर वो आता है तो मैं जरूर गुनगुनाने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगी उस गाने को।
0: ओके, फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल इस गाने को सुनकर तो सच में मजा आ गया, क्यों आर्यवंशिका जी?
1: बिल्कुल गाना बहुत ही प्यारा है, इसलिए तो मैंने कहा कि तोते मैना फोड़ाना चाहिए, है ना अमन जी?
0: बिल्कुल, तो आज का सबसे पहला किनका जवाब आया हुआ है भाई? मुझे हंसी आ रही है भाई, सोनू गौतम जी मानना पड़ेगा।
1: पहले तो हम सोच रहे थे कि ये टावर के पास बैठे, मुझे लगता है टावर को घर में ही नहीं आए हैं।
0: बताइए,
1: और इनका सबसे पहले गाना है तुम्हें देखिए मेरी आंखें, इसमें क्या मेक होता है, और इसी गाने में शामिल है हमारे साथ में निशांत राय बोले जी, राजेश कुमार जी, बट एक गाना है जो कि मेजोरिटी में है, तुझे ना देखूं तो चैन, मुझे आता नहीं।
0: चलिए चलिए दोनों गाने को मैं प्ले करूंगा, फिलहाल तुम्हें देखिए मेरी आंखें एंजॉय कीजिए,
1: और दूसरा गाना मैं जरूर गुनगुनाऊंगी।
0: ओके ठीक है, तो जब आपको मौका दिया जाएगा तो आप जरूर गुनगुना लीजिएगा, पहले फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। ओके
1: जी बिल्कुल।

0: कहीं मुझ प्यार हुआ तो नहीं है।
1: और फिलहाल अब तो इजाजत भी लेने का समय आ चुका है ना।
0: बिल्कुल, आप सभी लिसनर्स ने इतने प्यारे प्यारे गाने भेजे ना, दिल खुश हो गया है ना मंजी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बस यही पे हम
1: आप इजाजत लीजिए क्योंकि हम आपके पास जाने वाले
0: हैं। तो बिल्कुल मैं इजाजत लेना चाहूंगी, आप सभी ने आज का सफर काफी खूबसूरत करा, आप सभी ने इतने प्यार प्यार गाने भेजे, इस प्रकार से आपने जो लाइव चैटों में रौनक बनाई रखी ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी को। मूवीज तो अभी काफी है मेरे पास भी, पर समय की कमी के चलते हमें जाना होगा, पर आप सभी जो आज के जो शो में आपने अपना समर्पण हमारे को दिया ना, उसके लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे। और इतने प्यारे प्यारे गाने, इतने प्यारे प्यारे फीडबैक, यानी खूबसूरत बना दिया आज हमारी सुबह को, खूबसूरत बना दिया है ना मंजी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो फिलहाल ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, और चूंकि मैं इसलिए रुक रहा हूँ ना क्योंकि मुझे इस गाने के साथ गुनगुनाना है।
0: बिल्कुल, हाँ ठीक है, मैं इजाजत लेती हूँ।
1: हाँ ओके,
0: और खुश रहिए। हाँ मैं निकलती हूँ, मतलब जाती हूँ मैं,
1: ओके बाय,
0: क्योंकि यहाँ पे चाय नाश्ता है, तो चाय नाश्ते को करने में जा रही हूँ। आप सब एंजॉय कीजिएगा, ये राहुल पासी जी जो नाश्ता लेके आए ना, उसको मैं करने जा रही हूँ। आप सब एंजॉय कीजिए आज के प्यारे से प्रोग्राम को, और ये कहूँगी सुनते रहिए रेडियो आसपास, सबको दीवाना बना दे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।
1: ओके बाय बाय, फिलहाल ये गाना।

बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ए घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता

हटूंगा वही इलाकों रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुट्टी को छोड़ूंगा नहीं। मैं अल्लाह

0: शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार लेटर्स चॉइस आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे। एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ लेकर ये प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार लेटर चॉइस। और आज के अक्षर जो है वो अक्षर है एच यानी ह। आपको एच अक्षर वाले गाने भेजने में, वैसे तो मेरे यानी कि प्लेलिस्ट में मतलब हमारे कंप्यूटर में शो कर रहे हैं 280 गाने, लेकिन 280 गाने अगर आ जाएंगे तो समझ लो 3 आदि की छुट्टी हो जाने वाली है। फिलहाल आप अपने पसंद के गाने एच अक्षर वाले अभी मुझे भेज सकते हैं रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद है और अच्छा लगता है।

बिल्कुल ना कोई रीजन रीजन रीजन ना कोई सीजन होता है। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफू भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हुकुम चंद जांगड़ जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, वेलकम करते हैं विष्णु चंद्र जी। और आत्माराम पाटिल जी भी हैं हमारे, अशोक देशमुख जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और काजल झक्का जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है काजल झक्का जी, ओके जी। और जुड़े वाले दोस्तों में हैं हमारे, यानी कि बबीता जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है, नमस्ते नमस्कार कह रही हैं। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। और ईश्वरलाल मेहर जी भी हैं, वेलकम है आपका भी। जाकिर खान जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं जाकिर खान जी, वालेकुम अस्सलाम। और मीना इब्राहिम जी यूएस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और आरिफ सिंधी जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। बागेश्वर निषाद जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अनिल कश्यप जी हैं, वेलकम है आपका भी। और निशांत राय बोले जी, वेलकम है आपका भी। और ज्योति खड़वड़ जी, आपका भी वेलकम करते हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी, आपका भी वेलकम है। जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और अंगद मिसाल जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे भेजा है हमारे शाहिद अंसारी जी ने। और सच में हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है, बिल्कुल, और दिल के कोने में छुपाया है। इंजॉय कीजिए इस गाने को, क्योंकि ये गाना मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगता है। और इंजॉय कीजिए।

0: शुक्र सिर्फ तुमको ही पाया है, हमने खामोशी से तुम्हें दिल में बसाया है। ये फिर वे
1: अर्जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार। नमस्ते जी, आपका ओपनिंग गाना बहुत अच्छा और साहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, दोनों आदमी को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और ईश्वर लाल मेहर जी लिखते हैं कि ये प्रोग्राम का पहला ही गाना बहुत ही प्यारा लगा है, सच में का जी। वैसे यहाँ पे मीना इब्राहिम जी लिखते हैं, वाह शाहिद जी आपका गाना का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की डिमांड करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाने से शुरुआत हुआ है। राधे राधे जी, वेलकम है आपका भी राधे राधे। और अगला जो डिमांड है हमारे ग्रुप डिमांड है हमारे अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सर्वेश भगत जी, तो सुनवाते हैं आप सभी के डिमांड को। पहला तो ये इनकी आवाज।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज संडे स्पेशल में एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है जान तेरे नाम और गाने का बोल है, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा।
0: चल जाएगा, चल जाएगा।
2: ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: सर्वेश भगत जी इनकी सुनते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार। नमस्ते जी, आज हमारा फरमाइश का फिल्म है जान तेरे नाम, गाने का बल है, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा।
0: अच्छा,
1: थर्ड स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरजंदा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, प्रशेश्वर भगत, आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सोनी कुमार, मोनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे सोनी जी, आरजे एम एस परमार जी, आरजे रत्ना जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के अमन।

0: आत्माराम जी,
1: अमन खान सर जी,
0: जी जी,
1: आज हर शब्द पर हमें गाना भेजना है सर। तो मूवी का नाम है जान तेरे नाम।
0: अच्छा।
1: और गीत के बोले सर, हम लाख छुपाए प्यार मगर, ये गाना हमको यानी अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, सैयद विनोद जी और हमको और हमारे साथ साथ आपको और सुंदरता की मूरत को ये गाना सुना दो।
0: सुनवा दिया।

वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं और आ चुके हैं। ज्योति खटवाड़े जी लिखते हैं कि अमन जी, आज सुबह का जो ये नवर्ड मस्ती का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब था। आज का दिन मतलब आए तो इन दिन में यानी कि चांद और सूरज दोनों ने साथ प्रोग्राम करके वो चार चांद लगा दिए हैं और हमारा तो यानी संडे खूबसूरत बना दिया है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आगे भी नहीं, आगे टाइम नहीं मिलेगा, छुट्टी थी तो बिल्कुल मैं आ गया हूँ।

0: बिल्कुल एक्चुअली आज हर यानी संडे को कुछ ना कुछ हमेशा यानी काम रहता है, लेकिन इस संडे में फ्री था तो सोचा कि क्यों ना आप सबको सरप्राइज दिया जाए, इसीलिए आज हमने उनके साथ में एज ए गेस्ट आकर काम कर लिया यानी शो कर लिया। अगले हफ्ते से तो मुझे टाइम मिलने वाला है नहीं, इसलिए इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और हाँ इन फ्यूचर कभी टाइम मिलेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल ये फीडबैक।
1: जय अमन सर जी,
0: जी
1: धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर। सर हमारा तीनों भाई का, हमारा अशोक देशमुख का, आत्माराम पाटिल जी का, तीनों भाई का अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे बबीता जी जुड़ी हैं जी, वेलकम है आपका, तो पहले भी वेलकम कर चुका हूँ मैं। मनीषा शर्मा जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मनीषा शर्मा जी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ मुझे पता है आप इसी अंदाज में बोलते हैं ना। ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि ग्रुप डिमांड बहुत ही प्यारा था, बहुत मजा आया सुन के। और आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी लाख लाख शुक्रिया, आपने हमारा गाना प्ले कर दिया, ओके जी। और दोस्तों का भी शुक्रिया। अरे सिंधु जी क्या कहते हैं, इनके भी सुन लेते हैं।
2: अस्सलामुअलैकुम अमन सर जी, बहुत ही पॉपुलर गाने की डिमांड आपको मिली है जो दोस्तों ने की है आपको, अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, मैं तीनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। और अमन सर जी, जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, आपने प्ले करके हम तक सुनवाया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद आपके प्यारे फीडबैक के लिए। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन सर जी अंतरा मस्ती में जो अंतरा बताया जाता है और गाने के बोल हमें पहचाना पड़ता है, अगर गाने के बोल की जगह हम उस फिल्म का नाम बताने का कंपटीशन हो तो कैसा रहेगा, मतलब गाने का बोल पहचानना है और उस फिल्म का नाम बताना है। अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त इन्जॉय करें यानी टेंशन नहीं लें, इसीलिए इन्जॉय को इन्जॉय तक ही मैं सीमित रखता हूँ। और ये फीडबैक सुनता हूँ, क्या कहते हैं भाई विष्णु चंद्र जी।
3: हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आएगा।
0: अच्छा लगता है, मिले हैं,
3: गाना रहा है ये अपने जमाने का, बहुत ही खूबसूरत गाना है, धन्यवाद।
0: ओके जी वेलकम करते हैं आपका भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारा था, बहुत मजा आया सुन के। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि वेरी नाइस एंड लवली सॉन्ग, ओके जी आप फीडबैक सुनते हैं।
4: हेलो अमन सर
0: जी, जी बोलिए।
4: मैं मिसाल अंगद, और अमन सर जी आज दोपहर का 11 बजे का जो कार्यक्रम था आपने और आरजे वंशिका जी ने सादर किया, तो अमन सर जी गाने किस ऐप से आपको भेजने थे, क्योंकि मैं सॉन्ग रिक्वेस्ट से गाना भेजता था लेकिन अब तक पहुंच चुका था या नहीं मुझे क्या मालूम नहीं है, लेकिन किस गाना भेजना था इसके बारे में हमको जरा डिटेल्स में जरूर बताना।
0: ओके मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली वो किसी ऐप से नहीं भेजना था, रेडियो हॉटस्टार का ही ऐप है और उसमें एक ऑप्शन दिया गया है यानी चैट बॉक्स, यानी कि वहाँ पे जैसे लोग यानी पहले व्हाट्सएप के इन ग्रुप में बातें करते थे ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, यहाँ पे एक इन लाइव इन चैट का ऑप्शन दिया गया, उसमें वो किसी का कोई नंबर देखेगा नहीं, बस उसमें आपस में बातें करते रहिए जितना दिल हो सके, उसी यानी चैट ग्रुप में आपको ऑप्शन दिए जाते थे, यानी वहीं पे सवाल आता था, वहीं पे आपको जवाब बताने थे। और बाजी मारे हैं आज यानी सोनू गौतम जी, सच में बहुत ज़्यादा उन्होंने जवाब दिया था सबसे पहले, और भी दोस्तों ने जवाब दिया, लेकिन जो यानी सबसे पहला जवाब देता था उन्हीं के गाने में वहाँ पे प्ले करता था, इसलिए यानी कि चैट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अभी तो लाइव यानी चैट बॉक्स में हमें ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से उस समय आप लोग आए थे पूरा धमाल मचाए थे, वैसे यहाँ भी अभी भी आइए और उसका उसमें इंजॉय कीजिए, अच्छा लगता है। काजल झका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका, लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है। मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर एंड शानदार गाना है, ओके जी मजा आ रहा है सुन के। और बबीता जी लिखते हैं कि मिली जुली डिमांड बहुत ही प्यारा था और मुझे डेडिकेट करने के लिए धन्यवाद है। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, इसी बात पर फिलहाल इस गाने को थोड़ा और पहले आना चाहिए था लेकिन इन लोगों ने भेजने में देर कर दी, कोई बात नहीं अभी नहीं बजाऊंगा तो फिर कभी नहीं बजा पाऊंगा, इसीलिए अभी बजा देता हूँ। आरिफ सिंधी जी का गाना है और सुनीता गोप जी का है, दोनों की एक ही डिमांड है और गाने का बोले हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, बिल्कुल इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: ओहो, मैं कैसे समझाऊं यार। फिलहाल फीडबैक शामिल करता हूं। इस बार आज देखते हैं कि दोनों दोस्तों के डिमांड बहुत ही प्यारे लगे हैं और लाजवाब लगे हैं। मजा आ रहा है सुन सुन के। और मनीषा शर्मा जी, आप देख लीजिए, आपको जो बेस्ट लगे वैसा कीजिए। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगला ये फीडबैक सुनते हैं, क्या कहते हैं।
1: जय अमन सर जी, अरिफ सिंधे जी या सुनीता गोपती, दोनों भाई बहन मिलीजुली परिवार में शामिल किए, उनको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और काजल झका जी लिखते हैं, गाना तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है जी। ओके जी। और आर्य सिंधे जी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी मेरे डिमांड का प्ले करने के लिए। और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया गाना सुनवाने के लिए, सॉरी फीडबैक देने के लिए। और इसी गाने में शामिल थी सुनीता गोप जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं, दिल से शुक्रिया है। और साथ ही साथ हमारे रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है सच में का। ओके जी। और रणवीर लभर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन बाबू, गुड इवनिंग इन भैया जी। और लिखते हैं कि इन कैसन हैं आप। अरे हम तो बहुत ही बढ़िया हैं, प्रोग्राम झक्का चल रहा है, हमसे तुम दोस्ती कर लो, गाना बहुत ही अच्छा लगा सर, रेनबो लगा। ओहो, बहुत बहुत वेलकम है आपका भाई। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद। और अमन सर जी, अभी मैंने लाइव चैट ओपन किया तो अमन सर जी वो कुछ पासवर्ड मांग रहे हैं, तो पासवर्ड कौन सा डालने का मैं भूल गया हूँ। तो अमन सर जी, मेरा पासवर्ड क्या है तो आप ज़रूर बताना इसके बारे में। और अमन सर जी लाइव चैट
0: ओके
2: क्या है तो आप ज़रूर बताना इसके बारे में। और अमन सर जी लाइव चैट जैसे ओपन हो जाएगा हम मैसेज करेंगे, धन्यवाद।
0: तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका पासवर्ड आपको भेज दिया है आपके यहीं पे, यानी कि चैट बॉक्स में, आप देख लीजिए और वहां से लॉगिन कर लीजिए। आपका मैंने इन पासवर्ड को रिसेट कर दिया है। ओके, फिलहाल मेरे पास अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि हमसे तुम दोस्ती कर लो, गाना बहुत ही शानदार लगा है। और निशांत राय वो लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है सच में का। वैसे आत्माराम जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
3: हमसे तुम दोस्ती कर लो, बहुत ही बढ़िया गीत। और रहीम भाई और सुनीता गोप जी, आपका गाना बहुत बढ़िया, और रहीम भाई जी का फीडबैक हमें बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया उनको। आत्माराम पाटिल,
0: धन्यवाद देते हैं आत्माराम पाटिल जी आपको भी। और रहीम भाई नहीं थे, वो थे क्या नाम था, आरिफ सिंधी जी। ओके, फिलहाल यहाँ पे जुड़ चुके हैं, यानी कि प्रकाश जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रकाश जी आपका भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि जबरदस्त डिमांड था ये। और जन्नत जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत यानी वेलकम है। ओके, फिलहाल एम ताहिर साहब भी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि अमन खान सर जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को दिल की गहराई से आदाब अर्ज है और तहे दिल से बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपका आपकी यह शानदार पेशकश वाकई बेहद लाजवाब लग रही है। एम ताहिर बड़ापुर बिजनौर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई ताहिर साहब। मीना इब्राहिम लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और सुनीता गोपी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। अच्छा ओके, फिलहाल तो मुझे नहीं पता है भाई, यानी कि निकला जी कहाँ है, अगर सुन रहे हैं तो प्लीज आपको रेनबो लवर यानी कि चैट बॉक्स में याद कर रहे हैं, प्लीज आप उनको ज्वाइन कीजिए। और तोसदीना खातून जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है तोसदीना खातून जी। और ईश्वरलाल मेहर लिखते हैं कि झक्का सॉन्ग सच में का। अगला जो डिमांड है हमारे धनेश मिश्रा जी का है, दिल्ली से सुनना चाहते हैं, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे सच में का। इंजॉय कीजिए तो

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना सच में हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। और बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं। जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है जितेंद्र सिंह जी आपका भी, और अब्दुल जब्बार अंसारी जी भी जुड़े हैं, लिखते हैं थैंक यू सो मच एक ऐसा मंच बनाने के लिए जिस पर वो सबका फेवरेट सॉन्ग सुनाया जाता है। अच्छा, सही में थैंक यू सो मच इतने प्यारे फीडबैक के लिए। अंचल कुमार जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और तो दीना खातून जी लिखते हैं वाओ वाओ वाओ वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और मिसाल अंगा जी लिखते हैं अमन शाह जी यानी पासवर्ड मेरे व्हाट्सअप नंबर भेजिए, भेज दिया है तो देख लीजिए व्हाट्सअप अपना चेक कर लीजिए। और आर्य सिंधे जी लिखते हैं कि बहुत ही ये प्यारी डिमांड है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी धनेश मिश्रा जी को। और सोनू गौतम जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि एम ताहिर जी का स्वागत है रेडियो हॉटस्टार में, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, बहुत खूबसूरत ये गाना और मजा आ गया सुन के, धन्यवाद। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, क्या गाना है, सच में जितना भी सुनो मन नहीं भरता इस गाने को। और काजल झका जी लिखते हैं कि अच्छा ओके बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, बहुत ही बेहतरीन गाना है जी। और निशांत है बोए लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, ओके जी। और रेनबो लवर जी लिखते हैं कि सर जी सॉरी ये लिखते हैं कि सर जी गाना देखिए ये गाना आज के थीम पर नहीं, आज का अक्षर है एच अक्षर, यानी लेटर है एच, है ना, आप यानी कि उस अक्षर से गाने लिखकर भेज सकते हैं तो मैं गाना जरूर प्ले करूंगा। ये जो आपका गाना है वो जी से है, वो मैं नहीं प्ले कर पाऊंगा, इसके लिए आई एम सॉरी। तो एच अक्षर वाले गाने मुझे भेज सकते हैं, आज का थीम पर यही लागू होने वाला है। मीना जी लिखते हैं कि वाओ बहुत ही प्यारा गाना है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि वाओ लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। हुकुम चंद जांगिर जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ओके ओके। और अगला जो मतलब आज हम क्या बोले, सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हुए आ भी चुके हैं। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो हाँ अगला जो गाना है सबसे पहले हम सुनवाएंगे एम ताहिर जी का। एम ताहिर जी हर दिल जो प्यार करेगा, सच में हर दिल जो प्यार करेगा, इस गाने को सुनवा रहा हूं मैं, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल हाँ, दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे जन्नत जी लिखती हैं कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, सो ब्यूटीफुल सॉन्ग और आपकी वॉइस सो स्वीट, ओह थैंक यू सो मच जन्नत जी आपका। और ईश्वर लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग चल रहा है। और मीना जी लिखते हैं वाओ बहुत खूबसूरत गाना है जी। और काजल झका जी लिखते हैं कि गाना तो बहुत ही प्यारा प्यारा चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि हर दिल जो प्यार करेगा बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। एम ताहिर जी आपकी पसंद बहुत अच्छी लगी है और सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन सर जी बैक टू बैक सॉन्ग एक से बढ़कर एक, सभी को शुक्रिया और खुशी लग रही है, शुक्रिया आत्माराम पाटिल,
0: धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि नाइस पसंद है। अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी क्या नाम है यानी कि प्रकाश कुमार जी का, सुनते हैं।
2: गुड इवनिंग अमन सर, मैं प्रकाश कानपुर नगर से
0: जी, वेलकम है।
2: सर मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है, जैसा कि आपने एच शब्द दिया है,
0: एच शब्द जी बिल्कुल, मुझे एच एच मतलब इन शब्द नहीं एच लेटर दिया है मैंने,
2: दिया गया है
0: और अक्षर दिया है
2: के बोल इस प्रकार है। आप हमारे दिल को चुरा कर आंख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस सूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, ओ अपना के हर किसी को परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना,
0: बिल्कुल
2: हर दिल जो प्यार करेगा
0: अब सही लाइन
2: गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में

0: बिल्कुल हर दिल जो प्यार करेगा वो सच में गाना गाएगा। और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास। एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि अमन खान जी की आवाज का जादू वो श्रोताओं की गहराई से छूता है, लेकिन एक शो आप आकांक्षा जी के साथ इन करें तो आपके और उनकी मखमली और इन पुरकशिश आवाज में ऐसा खिंचाव है जो हर उदास शाम को खुशनुमा और तन्हाई को खूबसूरत बना देता है। अब जब वो और वे इन माइक को थामते हैं तो आप दोनों कहें हर अल्फाज में खास अपनापन, नजाकत और भावनाएं घुल जाती हैं, जिसे सुनने वाला लफ्जों के उस रन भरे एहसास में आसानी से खो जाता है। मेरा इन सॉन्ग प्ले करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। वो कहाँ वो, मतलब एक महान आरजे, और कहाँ मैं, कैसे मुकाबला हो सकता है। वैसे फिलहाल मैं, अगर वो कभी हमारी खुश नसीबी होगी अगर वो हमारे साथ में कभी प्रोग्राम करेंगे, और उनके साथ प्रोग्राम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तो फिलहाल मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, क्या कहते हैं
1: अमन सर? मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और सरबजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, नमस्ते, वेलकम करते हैं आपका भी। और ईश्वरलाल लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है, बिल्कुल। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि मुकेश की आवाज़ में गाना मुझे बहुत ही पसंद है, आया है, हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। और आज हमारे साथ हमारे मित्र भी सुन रहे हैं, नाम है शेर सिंह। अच्छा भाई, शेर सिंह का बहुत बहुत वेलकम है उनका रेडियो हॉटस्टार में। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग बहुत ही प्यारा लगा है। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि अगला गाना आप ही का है मनीषा शर्मा जी, टेंशन मत लीजिए। काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जिंदाबाद। और ये फीडबैक,
2: हर दिल जो प्यार करेगा, अच्छा, वो गाना गाएगा, दीवाना से।
0: देखिए आप भी गाना गा रहे हैं,
2: पहचाना जाएगा।
0: आप भी प्यार करते हैं ना
2: सर जी?
0: बोलिए बोलिए।
2: माथुर चंद्र मुकेश जी ने जो गाया हुआ गीत है बहुत ही बेहतरीन, और फरमाइश थी हमारी प्रकाश कुमार
0: जी जी की,
2: शुक्रिया उनको अच्छा गीत देने के लिए, आत्माराम पाटिल।
0: अगला जो डिमांड है मनीषा शर्मा जी का है, और ये गाना सच में बहुत ही प्यारा है, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हैं, बहुत सारे निशांत है बोले, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है ये। जी बिल्कुल, मुझे पता है ना भाई, इसीलिए तो मैं इतना परेशान था इस गाने को मतलब इन्हें प्ले करने के लिए। ओके जी, और मैं बता दूं कि राजू राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई राजू राजेश कुमार जी। बहुत दिन बाद आए हैं, और कहाँ थे भाई। वैसे ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि वह क्या गाना है, दिल को छू गया ये गाना। जी अगला गाना भी दिल को छूने वाला है, जिसे भेजी है इंसिया जी, उनका गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं वाह वाह वाह क्या गाना है, गाना बहुत अच्छा लगा, ये हुई ना बात। और ये क्या कहते हैं भाई प्रकाश जी,
1: हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू,

0: महसूस करो।
1: बिल्कुल,
0: प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। हमने देखी है, अमन सर मनीषा शर्मा की फरमाइश बेहद सुपर है
1: जी। उनका गाना बेहद सुकून देने वाला है, और मत इतने प्यारे गाने की डिमांड करने के लिए हम उन्हें बनाते हैं आज का सॉन्ग विनर। बहुत बहुत बधाई हो, आपको एक गाना और सुन सकती हैं। एक दिन आपका गाना प्ले नहीं हुआ था, मुझे अभी भी अफसोस है। आज मैं कोशिश करूंगा आपके गाने को प्ले करने के लिए। ये फिर
2: अमन सर जी,
1: जी जी
2: जब भी गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड गाने लगते हैं तो हम सब काम बंद कर देते हैं।
1: अच्छा,
2: टाइम के लिए, क्योंकि उसी में जो खुशी है वो किसी में नहीं, आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आनंद लेते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। काजल झका जी लिखते हैं गाना तो सच में बहुत ही प्यारा था, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि हमने देखी है इन वाला गाना, मुझे बहुत ही शानदार लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन सर जी क्या चीज़, मैं आपकी बात समझ में नहीं पा रहा हूँ, आप इन्हें क्या कहना चाहते हैं, आप इन्हें बोल कर भेजिए मुझे ताकि मैं आपको समझा सकूँ। और मनीषा शर्मा लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा है, और मेरा थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। ज्योति खड़वाड़े जी लिखते हैं कि मनीषा जी के पसंद ओल्ड इज गोल्ड सुपर लाजवाब। और जन्नत जी लिखती हैं कि लिखते हैं कि हाथों से छू के इस रिश्तों का तुम नाम ना दो। अच्छा, सच में कुछ रिश्ते का नाम नहीं होता है जी, बिल्कुल, क्योंकि कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। ये फीडबैक क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ अब जाके आपके प्रोग्राम से।
1: अच्छा।
3: प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब चल रहा है।
1: थैंक यू।
3: सभी दोस्तों का गाना एक से एक, धन्यवाद है सभी दोस्तों को
1: जी। वेलकम करते हैं आपका भी, और कुंता बेनी जी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग कह रही हैं सभी दोस्तों को, नमस्कार कह रही हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा डिमांड है। और एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि बेमिसाल सॉन्ग है। हाँ, वो तो मुझे ही भी पता है, ये गाना बेमिसाल था ही, इसीलिए तो सॉन्ग विनर बना दिया है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर डिमांड मनीषा शर्मा जी की। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि गाना तो बहुत ही झक्कास था। बिल्कुल, अगला जो गाना है वो यानी सिया जी के पसंद है, और सुनना चाहती हैं हमें तुमसे प्यार कितना, यानी कि श्रेया घोषाल की आवाज़ में। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

बहुत प्यार है, इतना बता नहीं सकते। बस यूं समझ लो मेरी सुकून हो।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना सच में हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते और मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। पहला तो सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी,
0: जी जी,
1: सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और मैं बता दूं कि मतलब और भी दोस्त यहाँ पे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और राजू राजेश कुमार जी लेते हैं कि आपका शो शानदार, दोस्तों की प्रशंसा शानदार, आपकी आवाज़ शानदार और आपका चैनल भी शानदार। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच इतने प्यारे फीडबैक के लिए। सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है। अच्छा जी, सच में। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है, ये सिया जी की सच में बहुत ही प्यारा लगा है। और नीलेश वीरोकार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नीलेश वीरोकार जी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मैं किशनी मैनपुरी से हूँ और मैं ये जानना चाहता था कि जो आरजे अच्छा जो ऑटो गाना प्ले होता है वो कैसे होता है? हाँ, वो यानी कि वो हमारे कंप्यूटर साहब जी है ना, वो गाना प्ले करते रहते हैं 24 घंटे। वो अच्छा, यानी काजल झका जी लिखते हैं गाना ये भी बहुत ही प्यारा लगा है। और कुंता बेन लिखते हैं कि ये श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये भी लाजवाब गाना, बहुत खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सिया जी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि इन तुम्हें कोई और देखे तो जलता है जिलवा, क्या लाइन है। और मीना जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत नगमा है। अगला जो डिमांड है वो रोशनी जी का है, रोशनी जी सुनना चाहती हैं हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो।

0: और लग रहा था एक बार बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि ये डिस्कनेक्शन वाला यानी कि हमें सीन दिखाई दे रहा है। एक बार हो सकता है कि बीच में डिस्कनेक्ट हुआ हो, कोई बात नहीं, फिलहाल फीडबैक शामिल करता हूँ मैं। और बहुत सारे फीडबैक है। जन्नत जी लिखती है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, और प्यार तो प्यार होता है, बताने की जरूरत क्या है। जी सही कहा है, और भी बताना थोड़े ना होता है, और उसका कोई यानी पैमाना भी नहीं है ना कि हम इनके नाप दे के हाँ इतना प्यार करते हैं, ये भी बात है ना। और फिलहाल ये फीडबैक
1: जय अमन सर जी, रोशनी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और काजल झक्का जी लिखते हैं वाओ ये भी गाना बहुत ही प्यारा है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हमको हमेशा चुरा लो, ये अमेजिंग पसंद है, अमेजिंग डिमांड है। और कुंता बेनी लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत ही क्यूट है, हाँ जी सच में का। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और बबीता जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही शानदार गाने चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, और सभी दोस्तों का शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनील कुमार जी लिखते हैं कि हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, गाना सच में बहुत ही सुपर है। वैसे अगला जो गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ

और इसी गाने में शामिल हो रहे हैं निशांत राय बोले जी भी। दोनों की डिमांड एक ही है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। भाई आज तक निशांत राय बोले ने अलग गाना नहीं भेजा है, ये हमेशा ये कॉपी पेश करते हैं, कोई कोई गाना रहता है उसी का वो डिमांड वो कर देते हैं। वाह क्या बात।

बिल्कुल, हमको तो सिर्फ तुमसे प्यारे सुंदरता की मुरज्जी। और मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत गीत है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं जी, अगला गाना आप ही गाना यानी वाला, मतलब अगला गाना आप ही का आने वाला है क्योंकि आप बहुत सही समय पर जुड़े हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फरमाइश चल रही है। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि वाह सुपर सॉन्ग। और काजल झका जी लिखते हैं कि गाना तो सच में बहुत ही प्यारा है। वैसे अगला डिमांड मैं सुनवा रहा हूँ राधा कृष्ण गोप जी का, इंजॉय कीजिए। हम तुमसे प्यार ना करते तो क्या करते।

0: मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं बहुत सारे, और फीडबैक में यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत अच्छा लगा है, मस्त लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और जितेंद्र जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर डिमांड है, और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर हिट गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की डिमांड ऑसम लगी है, और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि बैक टू बैक सभी सुपर हिट गाने चल रहे हैं। और सर्वेश भगत जी,
1: अरजय अमन सर जी, राधा कृष्णा गोप जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने लाजवाब चल रहे हैं, और निशांत है बोले लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और फीडबैक।
2: हाय अमन सर, हम अखिलेश गुड़गांव से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं,
0: बहुत
2: अच्छा लग रहा है, प्लीज मेरा मैसेज ले लें।
0: बताइए आपका कौन सा मैसेज है, यही मैसेज था ना, वो तो ले लिया मैंने। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं वाह क्या लाजवाब सॉन्ग है, सुपर सॉन्ग है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, और काजल झका जी लिखते हैं ये भी गाना बहुत ही प्यारा है, और कुंता बिने लिखती हैं कि सुपर लाजवाब डिमांड है, राधा कृष्ण गोप जी आपकी थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है आरती तिवारी जी का, सुनना चाहती हैं बॉर्डर फिल्म का हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

0: बिल्कुल, हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आ चुके हैं। जितेंद्र जी लिखते हैं कि झक्कास डिमांड के लिए थैंक यू आरती जी आपका, और लगता है कि आपकी आरती उतारनी पड़ेगी। अच्छा भाई उतार दीजिए जाकर। और नीलेश बिरोकार जी लिखते हैं कि वह क्या बात है, लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिल गया है। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग, थैंक यू सो मच। अच्छा और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, मुझे ये गाना बेहद पसंद है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: आके तेरी बाहों में गाना सुनता है आप हो सके तो मैं।
0: नहीं सर जी, आज ये मतलब ए अक्षर से नहीं प्ले होगा, आज जो भी अक्षर से गाने प्ले हो रहे हैं वो अक्षर है एच, ह अक्षर से, यानी एच अक्षर से आप गाने भेज सकते हैं, वो मैं गाना प्ले करूंगा, वो भी आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजना पड़ेगा। राधा कृष्ण को देखते हैं मेरे गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: अमन जी, आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत ही शानदार गाने सुनने को मिल रहे हैं, पर एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे?
0: नहीं भाई बोलिए ना।
2: आज ऐसा लग रहा है जैसे संडे नहीं मंडे है। धन्यवाद।
0: कोई बात नहीं, चलिए चाहे यानी कि संडे हो या मंडे, हर दिन तो फंडे है ना। फिलहाल ये फिर
3: आरजे अमन सर नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं अनिल कश्यप, वैसे तो जुड़ा एक घंटा से हूँ लेकिन बोल के फीडबैक अभी दे रहा हूँ। कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं।
3: मैं तो यहाँ ठीक ठाक हूँ और कार्यक्रम का मजा ले रहा हूँ।
4: हेलो आरजे अमन सर, मैं ओमरप्रीत आपको नमस्कार करता
0: हूँ। वेलकम है ओमरप्रीत
4: जी। मैं भी अपने चाचा के साथ रेडियो हॉट स्टार सुन रहा हूँ
0: जी। बहुत बहुत आप दोनों का वेलकम करते हैं। अकबर खान जी जुड़े हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम है। और अगला जो डिमांड है वो काजल झक्का जी का है, सुना चाहती हैं हो गई नी दीवाना तोहरा प्यार में, सच में का एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल। और वैसे फीडबैक आ चुके हैं। आरती तिवारी जी लिखते हैं कि यानी मेरे और मेरे हस्बैंड के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये काजल यानी सिस्टर जी की पसंद बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन है। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अजय अमन सर जी, आरती तिवारी जी या काजल झा जी, दोनों बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, दोनों बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: जी वेलकम जी आपका। और ईश्वरा जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना प्ले हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, अच्छा अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मस्त गाना है। अगला जो डिमांड है वो जाकिर खान जी का है। जाकिर खान जी सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, वैसे तो ये गाना चलिए मतलब बहुत सारे फीडबैक तो नहीं आए हैं, यानी कुंता जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और अभी ये क्या कहते हैं अखिलेश जी सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर, हमें गाना सुन रहा है हम तुम युग के जीवन साथी।
0: अच्छा सर ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। एक काम कीजिए, आप उसको अपना गाना को लिख कर वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिएगा, ताकि मैं भूलूंगा नहीं, अगर भूल जाऊंगा तो मुझे याद दिला दीजिएगा। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा था, और देवपाल जी लिखते हैं कि ओके ठीक है, मैं देखता हूँ आपका गाना आया है कि नहीं। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो यानी कि जन्नत जी का है, और जन्नत जी सुनना चाहती हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: हजारों में इन किसी की तकदीर ऐसी, बिल्कुल हजारों में किसी की ही इन तकदीर होती है जो बहुत ही अच्छी होती है। बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया है, मजा आ रहा है सुन के। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग ये भी है। और साथ ही साथ यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जाकिर खान जी की पसंद मुझे अच्छी लगी है, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। और ईश्वरलाल लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि अमन सर जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं सरोज भगत जी क्या कहते हैं।
1: अर्जे अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे रोशनी कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है, बहुत बहुत वेलकम है आपका रोशनी जी। और देवपाल मोहन जी लिखते हैं कि आपका भाई मुझे देखना पड़ेगा आपका गाना भी कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा फिलहाल। यहाँ काजल झका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी आप रेडियो हॉटस्टार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए उनका विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रचार क्यों नहीं करते क्योंकि रेडियो हॉटस्टार जिनको जिनको इन्हें सुनना चाहिए बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो उससे वंचित रह जाते हैं। और क्योंकि रेडियो हॉटस्टार डाउनलोड करने के बाद हर व्यक्ति यही सोचता है कि काश मैं पहले डाउनलोड कर लेता। हाँ चलिए अच्छी बात है, फिलहाल बहुत से दोस्त इन्हें सुनते हैं और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं, अंत तक बने रहते हैं, ये नहीं है कि बस आए और गए। बहुत बहुत शुक्रिया, भले ही फीडबैक नहीं देते हैं सुनते रहते हैं, सभी का शुक्रिया है। और यहाँ पे हुकुम चंद जांगर जी लिखते हैं कि ओके फिलहाल कोशिश करेंगे आपका भी। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है जी, ये तो गाना सच में थोड़ा सा दिल को छूने वाला था। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये सुपर सॉन्ग, इन तीन सभी इन बैक टू बैक जितने भी गाने हैं बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। ओके फिलहाल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ ये बिंदिया जी का। और बिंदिया जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: सच में हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहाँ तक आगे। सच में गाना बहुत ही खूबसूरत लगा, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और बहुत सारे फीडबैक है। एमडी जलील जी लिखते हैं कि सर जी हाउ आर यू। जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए जलील साहब कहाँ थे, बहुत दिन बाद आए हैं। और ओके, और उनके पास से दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं।
1: जानी ये रेडियो हॉट स्टार है, अकेले अकेले नहीं सुनना, खुद भी सुनना, दूसरों को भी सुनाना जानी, और डाउनलोड भी करवाना, क्या समझे जानी।
0: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कुमार गायकवाड़ जी। इस वाला लिखते हैं कि विद्या जी की पसंद सुपर हिट लगी है जी। और इस हमें सर्वज भगत जी क्या कहते हैं।
2: अरजय अमन सर जी,
0: जी
2: बिंदिया जी अपने गाने में शामिल की उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि हार्ट टचिंग सॉन्ग है, वेरी वेरी नाइस जी, बिल्कुल। और ये फीडबैक क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: बहुत ही सुंदर गाना था ये, और मैं सोच रहा था और आपने वही कह दिया, सच में सॉन्ग ऑफ द डे है ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। गाना था ही इतना प्यारा कि हम क्या ही बताएं। और कुंता भी ने लिखते हैं कि थैंक यू सो मच बिंदिया जी इतना शानदार डिमांड के लिए। ओके जी, और ये क्या कहते हैं।
4: हम तुम युग युग के।
0: अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आप उधर सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिए आपका गाना, मैं जरूर प्ले करूंगा। थोड़ा मैं भूल जाऊंगा तो मुझे याद दिलाएगा, लेकिन फिलहाल सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज दीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे। फिलहाल अगला जो डिमांड है वह हमारे ज्योति खटवड़े जी का है, सुनवाते हैं।

0: बिल्कुल और फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, ज्योति घटवटे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और इस वाला लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, मजा आ गया। ज्योति जी आपका, जागीर खान जी लिखते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो दीपक कुमार गायकवाड़ जी का है। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, सुना चाहते हैं आई रे खुशी।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे और कुंता बिन लिखती है। वाह बहुत खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच ज्योति खटवटे जी। और ज्योति जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना सुना दिया आपने। और विश्वलाल जी लिखते हैं झक्कास सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और मनीषा शर्मा लिखते हैं सुपर सॉन्ग है ज्योति खटवटे जी का। अगला जो डिमांड मैं प्ले करना चाहूंगा अखिलेश कुमार जी का, बेचारे बहुत दिन से मतलब बहुत देर से परेशान है, इसलिए इन्हें गाना मैं प्ले करता हूँ। फिर उसके बाद से आते हैं तो फिर गाना गाते हैं।

0: बिल्कुल, हम तुम युग युग से गीत मिला के गाते रहेंगे और हम भाई फीडबैक शामिल करते रहेंगे, आते रहेंगे।
1: अमन जी, आपने मेरा गाना बजाया, मुझे सुनाया, सबको सुनाया, खुद ने भी सुना और गुनगुनाया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से क्या दूं, धन्यवाद, शुक्रिया।
0: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जाकिर खान जी लेते हैं कि मेरे प्यार को बेफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को यादों का पैगाम दे गई, और मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, वो तो जाते जाते झंड बाम दे गई। अच्छा, तो लगा लीजिए। अकबर खान लिखते हैं सुपर सॉन्ग है, हायरे हायरे मजा गया सुन के। और इस वाला लिखते हैं सुपर सॉन्ग चल रहा है, और कुंता मैंने लिखते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही प्यारा पसंद है। और थैंक यू सो मच अखिलेश जी। अगला जो डिमांड है अकबर खान जी का है, सुनना चाहते हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता है जैसे।

0: बिल्कुल हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे मरने वाला जिंदगी चाहता हूँ जैसे आप रैक सुनवाते हैं।
1: हेलो अमन सर, आपने हमारा गाना सुनाया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: जय अमन सर जी, अकबर खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: और ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि आज तो सभी लोगों ने तहलका मचा दिया है, रेडियो हॉट टाइम में सभी गा रहे हैं, झक्का चल रहे हैं। अच्छा बिल्कुल। और जुड़ चुके हैं यानी कि विजय राज जी लिखते हैं कि अमन सर जी आपको और हमारे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार है, और सर आपके लिए दो लाइन है मेरी तरफ से, देखते हैं ये निखी, प्यार तो जिंदगी का एक अफसाना है और इसका यानी अपना ही एक अलग तराना है, सबको मालूम है कि मिलेंगे सिर्फ आंसू पर, ना जाने क्यों दुनिया में सिर्फ हर कोई रेडियो हॉट स्टार का दीवाना है। अच्छा सच में का तो प्रमोद कुमार लिखते हैं वाओ सुपर चॉइस चल रहा है, और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, और जुड़ चुके हैं यानी खुशबू, बहुत बहुत वेलकम है खुशबू जी आपका, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मजा का गाना सुन के। अगला डिमांड है अजय कुजी का, अजय कुजी सुनना चाहते हैं, हम तो थे अनजाने, बिल्कुल अनजाने थे लेकिन

0: थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो?
1: हाँ हाँ थोड़ा सा समझ रहे हैं। वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं। बागेश्वर साजी जितने की जंगल लव मूवी का गाना बहुत ही प्यारा है, नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और फीडबैक सुनते ही है,
2: अजय अमन सर जी, अजय कुश जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका। और अकबर खान लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना सुनवा दिया। सभी साथियों को भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। अखिलेश कुमार क्या कहते हैं?
3: हेलो अमन सर, हमें गाना सुनना है। हम
1: एक दिन में एक ही गाना सुना जाता है, और प्लीज इस तरह से डिस्टर्ब मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ईश्वर जी लिखते हैं, वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के, इस गाने को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते। काजल झका जी लिखते हैं, गाना मुझे भी बहुत प्यारा लगा। और आज के जो यानी विनर बनी हुई है यानी कि मनीष शर्मा जी, तो उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। और इसके बाद से फिर अगला मैं फरमाइश दूंगा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और फिलहाल मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, ये सुनते हैं।
1: अमन जी, आप पहले आरजे हो जो गाना सुनाने के साथ गुनगुनाते भी हो। अच्छा। तो मैं आपको एक प्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा। स्टार आरजे अवार्ड प्राइज गोज टू अमन अमन अमन फ्रॉम रेडियो स्टार। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सर?
0: बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर आपके इतने प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। बस मैं यही सब चाहूंगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें मुझ पर। वैसे अगला गाना बहुत ही प्यारा है हमारे किन का। एक मिनट जब फीडबैक शामिल कर लूँ फिर बताता हूँ। और फीडबैक में इस वाला जी रहते सुपर सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है सुन सुन के। और ग्रंथ यानी गायकवाड़ जी रहते हैं कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई ग्रंथ जी, जो आज आपने गाना भेजा है वो मैंने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो एच लेटर से नहीं था। आज अक्षर वाले ही गाना इन प्ले हो रहे हैं, इसलिए आप उसको भेजें। और फिलहाल नरेंद्र इन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि हम यानी बलरामपुर छत्तीसगढ़ से हैं और प्रोग्राम शानदार चल रहा है, और यानी कि ये एक इन पत्रकार भी हैं, तो बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं भाई इन पत्रकार साहब। अजय कुछ लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और अखिलेश कुमार क्या कहते हैं?
2: हेलो अमन सर, मैं अपने पापा के साथ गाना सुन रहा हूं, मैं आदर्श हूं।
0: ओके, आपका बहुत बहुत वेलकम है आदर्श जी। और ज्योति खटवाले लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद सुपर लाजवाब लगी है। और कुंता बिन जी लिखते हैं कि मनीषा शर्मा जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रवि महाराज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच। और मनीषा शर्मा लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे किनका, नंदलाल यादव जी का। ओके, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: चल रही है बिल्कुल।
1: हमारी धड़कन में उसकी धड़कन, वो दिल में दिल बन के ढल रही है।
0: सच में थैंक यू सो मच नंदलाल यादव जी, इतना प्यारा गाना सुनवा दिया और मैं फीडबैक शामिल करूंगा, लेकिन इस गाने के बाद आते हैं तो बताते हैं। और जितने भी फीडबैक आएंगे वो सिर्फ नंदलाल जी को ही जाएंगे इस गाने के लिए भी, क्योंकि मेरी तरफ से है उनको।

0: बिल्कुल आ गया फीडबैक लेने के लिए। फिलहाल पहला फीडबैक,
1: अरजय अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं, गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा, थैंक यू नंदलाल यादव जी। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नंदलाल यादव जी की पसंद अमेजिंग लगी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अजय कुछ लिखते हैं, सुपर सॉन्ग है और ये गाना बिल्कुल आपकी सुंदरता की मौत के लिए फिट बैठता है जी, थैंक यू सो मच, आपने सही कहा। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि ये यानी कि ग्रंथ गायकवाड़ यानी बिटवा है हमार, अच्छा तो बहुत बहुत उनका भी वेलकम करते हैं। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, मस्त लगी है। और कुंता बनर्जी जी लिखते हैं कि वाह सुपर हिट लाजवाब, डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है नंदलाल जी वाला, जी बिल्कुल सही कहा आपने। और नरेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं कि आप सिर्फ बोलते नहीं दिलों से जुड़ जाते हैं, आपकी आवाज़ के सुर सीधे दिल में उतर जाते हैं, हजारों आवाज़ के बीच आपकी आवाज़ की अपनी पहचान है, शायद इसलिए प्रोग्राम का हर पल इतना शानदार हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। और नंदलाल जी लिखते हैं कि गाना मेरा प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद सुपर हिट लगी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे इन विष्णुचंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना सच में बहुत ही प्यारा था, थैंक यू नंदलाल जी। रवि मोहर जी लिखते हैं कि सुपर हिट लाजवाब सॉन्ग है नंदलाल यादव जी आपका, गाना सच में बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो खुशबू जी का है, सुनना चाहती हैं फिल्म कोई मिल गया का ये गाना, और कहती हैं आज बॉलीवुड के मशहूर ये फिल्म निर्माता और निर्देशक एवं पटकथा एवं लेखक राजेश रोशन जी का जन्मदिन है, तो उनको ये गाना समर्पित है उनके जन्मदिन पर। आपको सब याद रहता है भाई कैसे, फिलहाल इंजॉय कीजिए गाने को। आप बहुत अप टू डेट रहती हैं।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। एंडियन विष्णु जी लिखते हैं कि गाना सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और जागीर खान जी लिखते हैं कि यानी कि तरस गए हैं आपके दीदार को, फिर भी दिल ही आपको ही याद करता है। हम खुश नसीब तो आपके घर का आईना है, जो हर रोज आपके हुस्न का दीदार करता है। अच्छा जी, ये बात है। फिलहाल काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है और मुझे अच्छा लग रहा है। ईश्वरलाल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग, सभी डांसिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है। और खुशबू इन लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। रोशनी कुमारी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है, हाइला हाइला हुआ हुआ। और कुंता बेन जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है इन खुशबू आपकी। और गोपाल पटेदार जी लिखते हैं कि अमन सर जी नमस्कार, इन कैसन बानी। अरे हम तो बहुत ही बढ़िया बानी, रौरा बताई कैसन बानी। और बहुत बहुत रौरा के भी वेलकम बा। और हमारे गजन सुलकार जी लिखा था नहीं के हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार कह रहे हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ नीलेश वीरोकार जी का है और सुनना चाहते हैं हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तो इनकार सजना। बिल्कुल हमें तो प्यार हो गया, मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल हो गया है इन मुझको तो प्यार सजना भाई। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही मस्त गाना लग रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच नीलेश विरोकार जी। और जितेंद्र सॉरी ईश्वरलाल मेहर जी लिखते हैं कि झक्कास सॉन्ग है। और इनका तो हो गया, फिलहाल अगला जो डिमांड है वह हमारे राम गोपाल इन मोरिया जी का है, सुनना चाहते हैं हौले हौले हो जाएगा प्यार, बिल्कुल हो जाएगा, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे गजन अंजी लिखते हैं कि दोस्त नीलेश सूर्यकार जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, लाजवाब मजा आ गया। जन्ना जी लिखते हैं कि सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और आपकी भी पसंद लाजवाब है, थैंक यू सो मच, और सभी की पसंद लाजवाब है। जागर खान जी लिखते हैं कि हो गया है तुझको तो प्यार सजना, थैंक यू सो मच इस गाने को सुनवाने के लिए। और फिलहाल यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और रोशनी कुमारी लिखती हैं कि मेरा फेवरेट गाना है। अगला जो डिमांड है इस गाने के लिए आया था, हम यार हैं तुम्हारे दिलदार हैं तुम्हारे, किन किन दोस्तों का था? एक तो हमारे मिसाल अंगा जी थे, मिसाल अंगा जी के साथ कोई और भी था, जरा मैं ढूंढता हूँ। फिलहाल गाने आप लोग इंजॉय कीजिए और फिर मैं नाम बताता हूँ कौन कौन से दोस्त हैं।

0: बिल्कुल हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, कोई शिकवा अगर है और शिकायत अगर है हमसे गिला करो भाई। फिलहाल सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सर्वेश भगत जी कहाँ है जी, हाँ ये रहे।
1: जय अमर सर जी, सभी भाई या सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और काजल झक्का जी लिखते हैं गाना ही बहुत ही प्यारा है, और कुंता बने लिखते हैं कि ये मिली जुली खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच दोनों दोस्तों को। और ईश्वर लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड जी बिल्कुल। और गजानन जी लिखते हैं दोस्त मिसालंगा जी और सोनू इन वर्मा जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही पसंद आया मुझे। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी हमारी अम्मा बोलती हैं कि बेटा टाइम से खाना खा लिया करो, और आज तो प्रोग्राम देते देते और घर जाते जाते लेट हो जाते हैं। मेरी अम्मी तो भाई मत पूछिए, डेली ऐसा कौन सा दिन है जो मैं डांट नहीं सुनता हूँ, हर दिन डांट सुनता हूँ कि तुम जल्दी आया करो। मैं हमेशा 11 बजे जाता हूँ और खाना खाते खाते कभी इन 12 तो इन पार हो ही जाते हैं, बिना इन 12 बजे से पहले तो मुझे मैं खा ही नहीं पाता हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। फिलहाल फीडबैक शामिल करता हूँ।
2: हेलो अमन सर,
0: बोलिए बोलिए।
2: मैं मिसाल अंगद और अमन सर जी आपका डबल डबल धन्यवाद।
0: अच्छा।
2: क्योंकि आपने मेरा दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और मेरा वो पहला प्रॉब्लम आपने सॉल्व करके मैंने आपको मैसेज कर दिया है। और अमन सर जी दूसरा धन्यवाद इसलिए कि आपने मेरा इतना अच्छा गाना सुनवाया और सभी दोस्तों को पसंद आया, तो मैं सभी दोस्तों का भी धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी आज का संडे सचमुच सुपर संडे बन गए है, आज का मैं दिन भर रेडियो हॉटस्टार ही सुनता रहा हूँ और अभी तक सुन रहा हूँ।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ पे रवि मार्जी लिखते हैं कि हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, लाजवाब पसंद, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो कायनात जी का है, सुनना चाहती हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। और ये गाना है मुझे मैजिकल गर्ल यानी कि बुलाने वाले को, भाई ये यानी कि कौन बुलाता है भाई आपको मैजिकल गर्ल। फिलहाल गाना इंजॉय कीजिए।

फिलहाल यानी कि रात को आंखों में निकालते रहिए और गाना सुनते रहिए और सुनते रहिए। काजल सका जी लिखती हैं कि गाना मुझे सच में बहुत ही प्यारा है और मजा आ रहा है सुनकर। बबीता जी लिखते हैं कि नमस्ते मनसर जी, ना आपका गाना तो ऐसा भेजिए थोड़ा सा यानी गजल टाइप का है, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कहाँ फिट होगा वहाँ पे बैठा, अगर फिट होगा तो मैं जरूर प्ले करूँगा। ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि ये कैनाथ जी के पसंद। अमन सर जी अपने आप में एक आतिश है, आतिश मतलब होता है आग, ओ माई गॉड। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये कैनाथ जी के पसंद हमें बहुत ही पसंद आई, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि जबरदस्त गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करके गाना बहुत ही शानदार है और ये आवाज़ तो बहुत ही मनमोहक भी है। फिलहाल अगला डिमांड आर के रवि जी का, हमको तुमसे प्यार है, बिल्कुल सिर्फ हमको तुमसे प्यार है। इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल हमको तुमसे प्यार है। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये, आर के रवि जी थैंक यू सो मच। और एम ताहिर साहब भी लिखते हैं कि और यानी कि वो सच में वो मैजिकल गर्ल ही वो डिमांड ऐसी पसंद कर सकती हैं। अच्छा ऐसा है क्या। और ईश्वर जी लिखते हैं कि रोमांटिक सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के। और काजल झक्का जी लिखते हैं गाना सच में बहुत ही प्यारा था। और जन्नत जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी आप भी किसी नए श्रोताओं की फरमाइश शामिल करो तो हमें बता दिया करो क्योंकि नए लिस्नर है उनका। अच्छा ओके ठीक है ओके। फिलहाल रवि महाराज जी लिखते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। अगला गाना जो है वो रोजित खान जी का है, सुनना चाहते हैं हाँ तू है। हाँ आज इनका ये पहली बार गाना शामिल हो रहा है, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल हाथू है, हाथू है, हाथू है, और बहुत सारे फीडबैक भी है इस वाला देखेंगे। अच्छा ओके, कोई बात नहीं है। फिलहाल काजल ठका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कुंता जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा, मनसा जी मजा आ गया सुन के। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, मस्त गाना है। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक बागेश्वर निषाद जी का है और एक हुकुम चंद जांगिड़ जी का है, दोनों की एक ही डिमांड है, तो सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे राम गोपाल मोरे जी लिखते हैं कि सर जी नाइस सॉन्ग है, ओके जी, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, गाना अच्छा लगा है। और कजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि हौले हौले दिल डोले, मस्त गाना लगा है ये। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और फिलहाल यानी विष्णुचंद्र जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगला जो जो डिमांड है उसमें भी यानी दो दोस्त हैं, एक हमारे ईश्वरलाल जी और एक की सुनील कुमार जी हैं।
1: अमन भैया नमस्कार प्रणाम, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आज लेटर चॉइस में मेरी पसंद रहेगी फिल्म का नाम है दिल है बेताब, और गाने के बोला हर पल तेरे होठों पर बस यही एक फसाना है। और ये गाना पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, आपकी सुंदरता की मूरत को, और आकांक्षा जी हैं और वंशिका जी हैं, MS परमार जी हैं, सोनी जी हैं, रत्ना जी हैं, और सोनू गौतम जी हैं, प्रिंस पासवान जी हैं, मुक्तिनाथ जी हैं, सतीश शर्मा जी हैं, परवेज अहमद जी हैं, गौरव ठाकुर जी हैं, इनके साथ साथ नेकलस जी हैं, और अरुण मंडल जी हैं, M ताहिर जी हैं, और रणवीर सिंह जेठालाल जी हैं। और रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा ये गाना डेडिकेट रहेगा, धन्यवाद।
0: ओके, और इसी गाने में हमारे ईश्वरलाल मेहर भी शामिल हैं, तो आप सभी दोस्तों के डिमांड पे सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए हर पल मेरे होठों पे।

बिल्कुल, ये कोई प्रेम दीवाना है और दीवानी है। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और बागेश्वर निशान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, और ईश्वरलाल जी लिखते हैं अमन जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि हर पल मेरे होटल पे ये गाना मुझे बहुत ही मस्त लगा है, और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है, और गजानंद जी लिखते हैं कि हर पल मेरे होटल पर ये गाना बहुत ही प्यारा लगा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो यानी कि ये रश्मि जी का है, और ये स्पेशली मेरे लिए गाना है। एंजॉय कीजिए भाई।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आ चुके मेरे पास। और सबसे पहले तो यानी कि कुंता बनर्जी लिखते हैं कि ये गाना आज के सभी डिमांड बहुत ही लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतने पहले पहले गाने सुनवाने के लिए। और यहाँ पे मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि बहुत शानदार गाना है, मजा आएगा इस गाने को सुनकर। और रवि मार्जी लिखते हैं कि हर पल मेरे होठों पर भी गाना है, बहुत ही प्यारा लगा है, सुनते थोड़ा और।

0: रश्मि जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और बाबूला जी लिखते हैं अमन सर जी हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत देर कर दिया भाई। काजल झका जी लिखते हैं गाना ये भी बहुत ही प्यारा है, और जन्नत जी लिखती हैं हर पल मेरे होठों पर, वेरी नाइस चॉइस, और गजानंद जी लिखते हैं कि ये रश्मि जी की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, हमको दीवाना कर गए। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं मस्त मस्त मस्त मस्त सॉन्ग है ये, और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना। अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी का है, तो प्रमोद कुमार जी सुनना चाहते हैं, सुनवाते हैं।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार लेटर्स चॉइस आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
0: बिल्कुल, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से। और कभी कभी हम भी ना बहुत ही बड़ा गलतियां कर देते हैं, मतलब इंडिया मैंने गाना प्ले कर दिया और गाना मैंने डाउनलोड किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी जस्ट ए मिनट में, मतलब एक मिनट नहीं लगेगा, उससे पहले ही गाना डाउनलोड हो जाएगा, और सुनवाते हैं। दीजिए, हो गया, सुनवा दिया।
2: सुर में गाना सीखिए पादर।

0: बिल्कुल, और ये गाना मैंने पहली बार सुना, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा कुछ अलग हट कर है ये गाना। और गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय प्रमोद जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, और ये फीडबैक।
1: वेरी गुड इवनिंग मिस्टर आर जय अमन।
0: गुड इवनिंग सर।
1: How are you, my dear?
0: I am fine, sir. What about you? And how are you?
1: I'm listening to your program on the way from Sweden.
0: Okay, thank you so much for your feedback. और बहुत से दोस्त आपको यानी कि जो लाइव चैट बॉक्स है वहाँ पे मिस कर रहे थे, जैसे कि वो सोनू गौतम जी खासतौर उनका, और हाँ वो रेनबो इन लवर जी, उनका मैसेज आया था कि शायद आप नाराज़ हैं, आप पता नहीं क्यों नाराज़ हैं, जरा उनको बता दीजिएगा जाकर यानी कि लाइव चैट में। बाबूलाल जी लिखते हैं कि भाई इन प्रमोद जी की पसंद बहुत ही अच्छी लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। काजल झका जी

इतने गाना बहुत ही प्यारा है और जन्नत जी लिखते हैं कि ये सैड सॉन्ग भी लगा लेकिन अच्छा लगा ओके और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो बबीता जी का होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो सुनवाता हूँ। इसके बाद आमना खान जी

0: गीत आपका अमर हो चुका है। और वैसे बिल्कुल, और यानी के निकुंता बेनर्जी लिखते हैं कि ये प्रमोद जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और रवि मोहन लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है, यानी प्रमोद जी का मजा आ गया सुन के। और बबीता जी
1: नमस्ते, अमन सर जी वाओ क्या गाना सुना है, ये गाना सबसे हटके लगा, अच्छा लगा सुनने, बहुत बहुत धन्यवाद भाई के जो अपने इतने अच्छे गाने सुनाए, और सब भाई बहन के गाने अच्छे चल रहे हैं तो सबको धन्यवाद, मेरा गाना भी चला, धन्यवाद।
0: ओके जी, और सब जी, और हाँ यहाँ पे यानी गजानंद जी लिखते हैं कि बबीता बहन जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, उनको धन्यवाद देते हैं। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, होठों से छू लो तुम। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल चॉइस है बबीता जी, होठों से छू लो तुम गीत अमर कर दो। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बबीता जी की डिमांड औसम है। साथ ही साथ जन्नत जी लिखते हैं कि मतलब इस गाने की हर एक लाइन बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे आमना खान जी का मैं प्ले करता हूँ गाना, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। बिल्कुल आप प्रीति जिंदा की तरह ही रहेगी, एंजॉय कीजिए गाने को।

0: बिल्कुल वैसे ही रही है और कोई इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। और रवि मार्जी लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था बबीता जी का, मजा आया सुनकर। बाबूलाल अंजना लिखते हैं बबीता जी के पसंद, आमना खान जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। काजल झका जी लिखते हैं ये भी गाना बहुत ही प्यारा है। और गजानंद जी लिखते हैं आमना खान जी के पसंद बहुत ही पसंद आई है। और शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैं तो मतलब कब से इस प्रोग्राम को सुन रही हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिले हैं और सभी मेरे फेवरेट गाने थे, सभी को थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड राहुल पाथी जी का,
1: हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, जिंदगी में खुश नसीब है वो लोग जिन्हें मिली ये बहार, जिंदगी में। फिल्म का नाम शाबाश अमन सर जी, ये सॉन्ग सुनना है आपके लिए, सभी दोस्तों सुनने और जितने भी सुनने वाले हैं सभी के लिए।

और कुंता भी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और आमना खान जी की पसंद बहुत ही प्यारी डिमांड थी, उनको थैंक यू सो मच। और यहाँ पे इनके निकला जी लिखते हैं वाओ ब्यूटीफुल सॉन्ग है, और यहाँ पे शिल्पा पंच लिखते हैं आमना खान जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं राहुल पासी जी की भी पसंद बहुत अच्छी है। इसी बात अगला जो डिमांड है मीना इब्राहिम जी के है, तो मीना इब्राहिम जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, इंजॉय कीजिए।

ये गाना सच में बहुत ही धमाकेदार था, मजा आ गया सुन के। ज्योति खटवाली जी लिखते हैं, वाओ आज के सभी गाने लाजवाब लाजवाब लाजवाब, मजा आ गया। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मीना जी के पसंद ये डिमांड बहुत ही प्यारा है, और मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए, बहुत धन्यवाद है। और कई जान जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी की शानदार पसंद है, डांसिंग सॉन्ग सुनकर मजा आ गया। अगला जो डिमांड है देवपाल मुरिया जी का है, सुनना चाहते हैं हर कदम पर है कोई कातिल कहाँ जाए कोई, तो मैं सुनाऊंगा इस गाने को फिलहाल।

0: कहाँ जाए कोई। बिल्कुल, फिलहाल अगला मैं कॉल लगाता हूँ। सबसे पहले अनिल जी को लगाऊंगा, उसके बाद यानी काजल, ये क्या नाम है हमारे ईश्वर लाल जी को लगाऊंगा, फिर उसके बाद यानी काजल झका जी को लगाऊंगा। लेकिन फीडबैक भी है मेरे पास। अनिल जी लिख देंगे, नाइस सॉन्ग है। और बबीता जी क्या कहती है, इनकी सुनते हैं।
1: नमस्ते मनसर जी, आज तो मैंने 2-3 घंटा तक नेट ही नहीं चला था। बड़ी मुश्किल से मैंने बाहर जाके आपको मैसेज करी थी।
0: अच्छा।
1: गाने को इसमें चल, मतलब जहाँ मैसेज करना था उसमें हो ही नहीं रहा था। अच्छा। फिर मैंने अंदाजे में बकरी, चलो मैं देखूँ कोशिश करके, मगर पहुँच गया आपके पास तो सुनने को मिल गया। लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, हर किस्म के हर आइटम के गाना चला, बहुत अच्छा लगा। सब दोस्त को गाना सुन के मज़ा आया सुनने को। छत पे बैठी रही डर के मारे, मैं ऊपर ही अभी आई हूँ नीचे, और अब खाना पीना सबको दे रही हूँ, खा रहे हैं। और क्या कहूँ अमर सर जी, बहुत मज़ा आया आज तो प्रोग्राम सुनने में। सबको, सारे दोस्त को धन्यवाद, और आपने मेरा गाना चलाए साथ साथ गाए, मज़ा आ गया सुन।
0: लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई आज के, समझ लीजिए मैं बैठे बैठे तो मेरे मतलब कमर में दर्द हो गए हैं लगातार। ओके, और यानी यहाँ पे मतलब गजानंद जी लिखते हैं कि देव परमोल जी के पसंद मुझे पसंद है, धन्यवाद देते हैं। अब शिल्पा बेन लिखते हैं कि हर कदम पर कोई कातिल कहा जाए, कोई बहुत ही प्यारा गाना है। फिलहाल हाँ इनको मैं कॉल लगाता हूँ, अनिल कश्यप जी को पहले, उसके बाद ईश्वरलाल जी को, उसके बाद इन काजल झक्का जी को। तो अनिल जी को पहले कॉल लगाता हूँ। अनिल कश्यप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, विनर बनने के लिए बहुत बधाई हो।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं?
2: बस बढ़िया सर, थोड़ी सी तबीयत अप डाउन है।
0: हाँ, लग रहा है कि तबीयत आपकी नासाज है।
2: हाँ, और इसलिए वॉइस मैसेज भी नहीं कर रहा था।
0: कोई बात नहीं, फिलहाल बता दीजिए क्या सुनना पसंद करेंगे
2: आज? तो गाना मेरा चला नहीं, वही वाला गाना जहाँ हमने दिल वही लगाया जहाँ लगाना मना था, ऐसा ही गाना है।
0: ओह माय गॉड, हमने दिल वही लगाया जहाँ मना। मुझे पता ही नहीं है आपने कहाँ दिल लगाया था। हाँ, वैसे गाना मैं प्ले कर दूंगा, लेकिन देखता हूँ डाउनलोड होता है कि नहीं जल्दी से, क्योंकि मैंने आपका गाना डाउनलोड किया ही नहीं था। इसलिए कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपके गाने को प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए, और आई होप कि जल्द से जल्द डाउनलोड हो जाए। और अपना ख्याल रखिए, है ना? शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आपका भी यानी कॉल तो है कनेक्टेड। कोई बात नहीं, मैं आपके कॉल को डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। इंजॉय कीजिए गाने को।

बहुत बहुत आपका वेलकम है भाई ईश्वरलाल मेहर जी, कैसे हैं? हेलो हेलो हेलो, दोबारा

शायद कॉल नहीं जा रही है। हाँ हेलो हेलो ईश्वरलाल जी, ईश्वरलाल मेहर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है रेडियो हॉटस्टार में। कैसे हैं आप? हेलो, एक बार आवाज आई थी आपकी। हेलो, नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ। हेलो, शायद नेटवर्क नहीं है मेरे ख्याल से, इसीलिए इनसे बात नहीं हो पा रही है। मैं इनका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अगला कॉल लगाता हूँ काजल झक्का जी को, इनसे बातें करता हूँ मैं और इनके पसंद के गाने सुनाऊंगा।

शायद उनके पास भी कॉल नहीं लग पा रहे। कोई बात नहीं है, अगला डिमांड में प्ले करता हूँ। और अगला डिमांड मेरा किन का है, हमारे यानी के ये है, यानी विष्णु चंद्र जी का। तो भाई विष्णु चंद्र जी इंजॉय कीजिए।

अरे ईश्वरलाल जी, आपने मुझे कॉल कर दिया, बताइए। हेलो हेलो, आपका नेटवर्क इशू है। हेलो

और मैंने इनका गलत गाना प्ले कर दिया है, मतलब गलत गाना प्ले नहीं किया था, एक्चुअली मैंने डाउनलोड किया सही, लेकिन गलत गाना डाउनलोड हो गया, इसलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अगला इनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। हाय शर्माओं, किस किस को बताऊँ अपनी प्रेम कहानियाँ, इंजॉय कीजिए भाई ये निकी।

जी फिलहाल आप यानी कि प्रेम कहानी सुनाते रहिए, हम अगला गाना सुना रहे हैं, वो भी यानी कि कुंता बेनी जी के पसंद पर, और ये पसंद है हमने सनम को खत लिखा, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

लेकिन ये गाना बहुत ही यानी कि ये कम डाउनलोड हुआ है जी। हमने सनम को खत लिखा, पता नहीं क्यों, दोबारा डाउनलोड करता हूँ। दोबारा भी उतना ही डाउनलोड हो रहा है, क्यों? बहुत कम डाउनलोड हुआ है ये गाना, शायद इतना ही मुझे मिला है या कोई और भी गाना है, देखता हूँ मैं।

ओह माय गॉड, ये गाना ही मुझे इतना ही मिल रहा है। आई एम सॉरी, मैं इसको यानी कि पूरा नहीं सुना पाऊंगा अभी फिलहाल। अगला जो डिमांड मैं प्ले कर रहा हूँ वो संदीप सुतार जी का है, और तो फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

पास इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए, और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि हमने भी दिल लगाया जहाँ दिल लगाना मना था, गाना मुझे अच्छा लगा है। और निशांत बोल लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं एक्चुअली आज की डिमांड वो मेरी नहीं थी, मेरे भतीजा का था, वो सो गया है, ओ माय गॉड, मुझे पहले पता होता तो पहले प्ले कर देता। और गजानंद जी लिखते हैं कि यानी कुंता बहन जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। कुंता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि कुंता जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, आखिरी डिमांड में प्ले कर रहा हूँ रवि महर्ष जी की। और रवि महर्ष जी इंजॉय कीजिए इस गाने को, और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाज़त। मिलते हैं फिर कल शाम 6 या 6:30 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, बाय बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: चतुर नार
1: करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: पप्पू की मम्मी
1: क्या?
0: तू बड़ी

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: देख यो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती,

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।